0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: वक्त हो चला है संक्षिप्त समाचारों का। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है सरकार। अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। पर्यटन के अलावा इस स्ट्रेटेजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर के अनुसार अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों के बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुंचाए जाने में देरी हो सकती है। माघोवाका जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए। स्थिति में सुधार लाने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय की वन विभाग सेवा की ओर से एक वृहद अभियान की शुरुआत। विदेश समाचारों में भारत में आसमान से बरस रही आग, भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी में हीट वेव का अलर्ट। और भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच वार्ता, बड़ा फैसला, एआई, रक्षा और व्यापार में भारत इटली की बड़ी साझेदारी, 20 अरब यूरो व्यापार लक्ष्य तय। ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब कम अधिकार, अमेरिकी सीनेट में क्रॉस वोटिंग, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित। स्पोर्ट्स न्यूज, खेल जगत से ये बेहतरीन खबर, सावोना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन राशेल क्रोपफेनस्टाइन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड सेकंड से तोड़ा है, 4 सेकंड से। और उधर एस्टन विला ने एससी फ्रेबर्ग को 3-0 से हराकर यूएफए यूरोपा लीग जीत लिया। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए।
2: You're listening to RM3 Radio मनोरंजन।
1: कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे थे और ये अब पूर्व की ओर बढ़ रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त ऊंचाइयों पर कुछ वर्षा हो सकती है। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। फिर भी दोपहर बाद में देश के उत्तर में बादल विकसित होने लगेंगे। मौसम अच्छा ही रहेगा। दक्षिण की ओर से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी क्षेत्र में 2 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 24 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 28 एवं 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:33 पर सूर्योदय

नून कलम और उनके लिखे की कसम, तुम अपने रब के फन से मजनून नहीं, और जरूर तुम्हारे लिए बे इंतहा सवाब है, और बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है। तो अब कोई दम जाता है कि तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में कौन मजनून था। बेशक तुम्हारा खूब जानता है जो उसकी राह से बहके, और वो खूब जानता है जो राह पर है।

तो झुटलाने वालों की बात न सुनना, वो तो इस आरजू में है कि किसी तरह तुम नरमी करो तो वो भी नरम पड़ जाएं। और हर ऐसी की बात न सुनना जो बड़ा कस्में खाने वाला, जलील, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनहगार, दुरुस्त खू, उस सब पे तुर्रा ये कि उसकी असल में खता इस पर के कुछ माल और बेटे रखता है, जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहता है कि अगलों की कहानियां हैं, करीब है कि हम उसकी सुअर किसी थूतनी पर दाग देंगे।

बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा उस बाग वालों को जांचा था जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते उसके खेत काट लेंगे और इंशाअल्लाह न कहा तो उस पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरा कर गया और वो सोते थे तो सुबह रह गया जैसे फल टूटा हुआ। फिर उन्होंने सुबह होते एक दूसरे को पुकारा कि तड़के अपनी खेती को चलो अगर तुम्हें काटनी है तो चले और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने न पाए और तड़के चले अपने इस इरादे पर कुदरत समझते। फिर जब उसे देखा बोले बेशक हम रास्ता बह गए बल्कि हम बेनसीब हुए।

उनमें जो सबसे गनीमत था, बोला क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तस्बीह क्यों नहीं करते? बोले पाकी है माए रब को, बेशक हम जालिम थे। अब एक दूसरे की तरफ मलामत करता मुतवज्जे हुआ, बोले हाय खराबी हमारी, बेशक हम सरकश थे। उम्मीद है हमें हमारा रब इससे बेहतर बदल दे, हम अपने रब की तरफ रगबत लाते हैं। मार ऐसी होती है, और बेशक आखिरत की मार सबसे बड़ी। क्या अच्छा था अगर वो जानते।

बेशक डर वालों के लिए उनके रब के पास चैन के बाग हैं। क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों का सा कर दें? तुम्हें क्या हुआ, कैसा हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे लिए कोई किताब है, उसमें पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए उसमें जो तुम पसंद करो? या तुम्हारे लिए हम पर कुछ कस्में हैं कयामत तक पहुंचती हुई कि तुम्हें मिलेगा जो कुछ दावा करते हो? तुम उनसे पूछो उनमें कौन सा उसका जामिन है या उनके पास कुछ शरीक हैं, तो अपने शरीकों को लेकर आए अगर सच्चे हैं।

जिस दिन एक साख खोली जाएगी जिसके माना अल्लाह ही जानता है, और सज्दे को बुलाए जाएंगे तो न कर सकेंगे, नीची निगाहें किए हुए उन पर खारी चढ़ रही होगी। और बेशक दुनिया में सज्दे के लिए बुलाए जाते थे।

जब तंदुरुस्त थे तो जो इस बात को झुटलाता है उसे मुझ पर छोड़ दो। करीब है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे जहां से उन्हें खबर न होगी और मैं उन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है। या तुम उनसे उजरत मांगते हो कि वो चट्टी के बोझ में दबे हैं, या उनके पास गैब है कि वो लिख रहे हैं।

0: तो तुम अपने रब के हुक्म का इंतजार करो और उस मछली वाले की तरह न होना जब इस हाल में पुकारा कि उसका दिल घुट रहा था। अगर उसके रब की नेमत उसकी खबर को न पहुंच जाती तो जरूर मैदान पर फेंक दिया जाता, इल्जाम दिया हुआ। तो उसे उसके रब ने चुन लिया और अपने कुर्ब खास के सजावारों में कर लिया। और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नजर लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरान सुनते हैं, और कहते हैं ये जरूर अकल से दूर हैं, और वो तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान के लिए।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, अभी अपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की पेश खिदमत है। हम्द, आइए समाअत करते हैं।

0: के नाम जिक्र करें। इस आयत में सराहत के साथ मुतायन अय्याम में अल्लाह पाक ने अपने नाम के ज़िक्र की तरगीब दी, लोगों को मोटिवेट किया। इससे भी इन दिनों की फजीलत वाज़े हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं, इसलिए ज़िक्र इलाही तो बंदों पर हर वक्त हर रोज़ लाजिम है। लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी याद के लिए कुछ दिन ख़ास फरमाए ताकि इन दिनों इन रातों की आज़मत और रिफ़त और बुलंदी और डिग्निटी को उजागर किया जाए। इन तीनों आयात और मकामात से और फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से इन रातों और दिनों की फजीलत, आज़मत और शान और शौकत वाज़े हो जाती है। अल्लाह पाक हमें स्पेशली इन दिनों में उन कामों की तौफीक अता फरमाए जिन कामों से वो राज़ी होता है, उसके हबीब राज़ी होते हैं। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: अभी अभी आपने जामे मस्जिद पोटलीस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामर बरकातहुमुल आलिया का ये बयान सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस बयान से इबरत पकड़ने की तौफीक अदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक किसी भी दिन का नेक अमल इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल लेकर निकला और फिर कुछ वापस न लाया। इस हदीस में ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की अज़मत बयान की गई है। अल्लाह ताला को इन दिनों में किया गया हर नेक अमल बहुत महबूब है। नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान पाक, सदका, ज़िक्र इलाही और वालिदैन की खिदमत जैसे आमाल इन दिनों में कई गुना ज़्यादा अज्र रखते हैं। यहाँ तक कि आम नफली इबादत भी बड़े दर्जे का सवाब रखती है। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को इन मुबारक दिनों को गफलत में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

मोहतरम सामीन, रोज़े की फजीलत। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार चीज़ें कभी नहीं छोड़ते थे, आशूरा का रोज़ा, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों के रोज़े, हर महीने के 3 रोज़े और फजर से पहले 2 रकात सुन्नत। यह हदीस ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में रोज़े रखने की अहमियत को ज़ाहिर करती है। अगरचे पूरे 10 दिन रोज़ा रखना हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन कम अज़ कम 9 ज़ुल्हिज्जा यानि यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। रोज़ा इंसान के नफ्स को पाक करता है और दिल को नर्म बनाता है। इन दिनों के रोज़े अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया बनते हैं और गुनाहों की माफ़ी का सबब भी है।

मोहतरम सामीन, तकबीर और ज़िक्र की कसरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन अल्लाह ताला के नज़दीक अजमत वाला नहीं और न इन दिनों का अमल ज़्यादा महबूब है, लिहाजा इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। इस हदीस में ज़िक्र इलाही की तलकीन की गई है। ज़ुल्हिज्जा के दिनों में तकबीरात, तहलील और तहमीद पढ़ना बहुत अफजल अमल है। मुसलमान को चाहिए कि चलते फिरते घर में, मस्जिद में और बाज़ार में अल्लाह का ज़िक्र करे। ज़िक्र दिल की सफाई, ईमान की मजबूती और अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करता है। इन मुबारक अय्याम में ज़िक्र की आवाज़ें पूरे माहौल को रूहानी बना देती हैं। ज़ुल्हिज्जा के ये मुबारक दिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इन दिनों को खेलकूद और फजूलियात में ज़ाया न करें, नमाज़ों की पाबंदी अख्तियार करें और कुरान की तिलावत बढ़ा दें। अपने दिलों को हसद, बोस और कीना से पाक करें। कसरत से इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। गरीबों और मोहताजों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला खुश हो। अगर कुर्बानी वाजिब हो तो इखलास के साथ अदा करें। इन दिनों में छोटा नेक अमल भी बहुत बड़ा अजर रखता है। अपने बच्चों को भी इन मुबारक दिनों की अहमियत समझाएं। अल्लाह ताला हमें इन दिनों की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। सामिन मोहतरम, सबा खैर प्रोग्राम अनकरीब ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ सबा खैर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.6 98.2 RM3.

अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल कदी लो गुजराती अरे तन छोटू पर मन मोटू अरे तन छोटू पर मन मोटू छे खमीर बनती जाती अरे भले लाग तो घोड़ो तू खेल कदी लो गुजराती भाई खेल कदी लो गुजराती।

भक्ति में शक्ति। सभी श्रोतागण को अनीता का करजोर नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, जहां आप सुन पा रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। भक्तजन, कहा गया है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो आइए सिर्फ सुविचार के साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वह पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। जिस प्रकार वृक्ष जितना ऊंचा होता है उसके गिरने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं, उसी भांति अहंकार जितना बढ़ता जाता है उसका अंत होना उतना ही निश्चित होता जाता है।

प्रियजन, एक सुंदर श्लोक इस प्रकार है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रिय कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोक कर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करें, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता है। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है।

0: भक्तजन, कहा गया है कि ना ही कश्चित् विजानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद् द्येव बुद्धिमान। अभिप्राय यह है कि कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। प्रियजन, लोभ के विषय में कहा गया है कि लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम, तृष्णार्थो दुखम आपनोति परत्रेह च मानवः। भावार्थ है कि लोभ से बुद्धि विचलित हो जाती है, लोभ सरलता से ना बुझने वाली तृष्णा को जन्म देता है, जो तृष्णा से ग्रस्त होता है वह दुख का भागीदार बनता है इस लोक में और परलोक में भी।
1: इस संसार का रचयिता ईश्वर है, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो कुछ हुआ है या हो रहा है और आगे होगा, वो सब ईश्वर की ही रचना है और केवल वही इसका ज्ञाता भी है।

श्रोताओं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसमें बसने वाला आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है, जो सदैव उसके साथ रहता है और इसलिए वह दुखी नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्योद्यम समो बंधुः कृत्वा यम ना वसीदति।

जहाँ भजन जीवन में आनंद की उत्पत्ति करता है, वहीं बोझिल जीवन में भजन एक ऐसा शाश्वत मार्ग है जो प्राणियों को शांति प्रदान करता है।

सुविचार इस प्रकार है कि पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनका इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसी विचार के साथ श्रोताओं, यह कार्यक्रम समाप्त होने चला है। आपने साथ एवं ध्यान दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन।

0: 谁人茫茫，丝丝梦幻般风雨，老醉人茫茫。
1: 你收听的是无理求思广播电台八一九频道。

0: चलिए अभी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। मॉरिशस डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजिकल बदलाव गतिशील बना रहा है। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के मुताबिक इन पिछले महीनों के दौरान फिनटेक में काफ़ी गति आई है और साथ में भारी संख्या में लोगों की ओर से मोबाइल पेमेंट भी किए गए हैं। इस तरह मूल ढांचों को सुदृढ़ करने और वित्तीय मंच को सुरक्षित रखने पर प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित गति प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ मॉरिशस का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। इस तरह सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को विकसित को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना, इन्हीं तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान टिका हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, सरकारी अस्पतालों में मधुमेह को, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर के अनुसार अस्पतालों में इलाज की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई है। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों में बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुँचाए जाने में देरी हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में वाली टीवी के सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इसमें टीवी के 21 और कांग्रेस के 2

0: विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज तड़के भीषण आग लग गई। भयानक आग की चपेट में आने से एक दमकल कर्मी और सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि दो अन्य दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। और खेल जगत से ये खबर, सावुना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन राचेल क्रुपफेंस्टेन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस तरह ये सबसे पहली प्रतियोगिता रही उनके लिए। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। साथ में उन्होंने कहा कि ये गर्व की भी के बात है, मॉरिशस के लिए ये जीत हासिल कर पाई है। और यूरोप में फुटबॉल की बात करें, कल रात एस्टन विला और एससी फ्रेबर्ग के बीच मैच खेला गया, जिसमें एस्टन विला की जीत 3-0 से हुई। इस तरह यूरोप लीग वो जीत गया, 1982 के बाद से उसकी पहली यूरोपीय ट्रॉफी है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। लातूलेन वाकुआ में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती धोंदी पैदाशी नाम कुशा, जो विद्यावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके बेटे श्री राजेश धोंदी के घर लातूलेन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमा महल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर पाँच जासमिन स्ट्रीट बैतिमारी में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद सरजू, जो मनोज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विमल सरजू के घर नंबर 5 जासमिन स्ट्रीट बैतिमारी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौजाबले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM। शोक में रूपेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। 12:10, कैसे हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त। चले जी, यहाँ पर विदिता गई है साथ देने के लिए। खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आए हैं। भूलिएगा नहीं, नंबर है 4028070। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं और बाकी अगर आप हेलो हाय कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें अपने व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं मैसेजेस 5250620000 पर। खूबसूरत गीतों का ये सफ़र है। चलिए हमारा आप साथ में मिलकर गुनगुनाते हैं, एक साथ बस इस सफ़र को तय करते हैं। हमारा टिकटॉक थोड़ी देर में लाइव होने वाला है, थोड़ा इंतज़ार कर लें।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर की जितने भी हम सफर हैं आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का जो हमारे साथ हैं, हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं और यहाँ पर आपका साथ है। तो चलिए, दिन के 12:22 हुए हैं और अभी क्या करना है, अभी गीतों के इस सफ़र को जारी रखना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, वैसे जैसे हम फ़ोन उठाने गए यहाँ पर फ़ोन बज रहा था लेकिन कट गई लाइन। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028-0700 पर, अदरवाइज़ थोड़ी देर में यानी कि हम 5 मिनट में होने वाले हैं लाइव टिकटॉक पर, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस वहाँ के लिए भी मोस्ट वेलकम।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर
2: सपनों की रानी नहीं लेकिन हाँ आपके दोस्त वेदिता जरूर आ गई हैं आपके लिए लेकर खूबसूरत पुराने गाने आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर। और सुहाना सफर में चलिए देखते हैं हमारे कौन से वो दोस्त हैं जो अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। अनिल राजन कुंजन आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दीप्ति गुंदावरी कैसी हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा भी कैसी हो, वेलकम आपका हमारे इस प्रोग्राम

0: करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आप हमें अगर सुन रहे हैं रेडियो पर, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ और बातचीत करें और मिस ना करें, तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है हमारे टिकटॉक लाइव पे। और यहाँ पर हमारे जो बाकी के दोस्त हैं, जैसे मनोज जी हैं, अभी अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मनोज जी, आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। चलिए देर न करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं तरुण के लिए। तरुण कैसे हो, इन्होंने तो नाम भी रख दिया तरुण रानी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गीतों का सफर जारी रखते हैं।
1: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: आप लोग इस समय वेदिता का साथ दे रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर। और सुहाना सफर में चलिए अब सैर कराते हैं आपको, यहाँ स्टूडियो से बाहर लेके चलते हैं, कहीं कहाँ जाना है बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो गाना होगा इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फरीना, फिया, सरिता, मनीता, लोलिता, आरजे रोहित और साथ में है जीतन दुलवा एंड रेखा पमोजे से, मिस्टर नूरुद्दीन हैं फ्रॉम पेरिस फ्रांस, शमिला बुदन, साकुन, विमी, आशीष, वी हैव टीना, अंजनी, रोशनी, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। सुल्ताना खानदाई भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कहते हैं कि कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना प्लीज़ डेडिकेट कीजिएगा हमारे लिए। रानी का वेलकम करते हैं, लीना है हमारे साथ बेलरोज से, नेक्स्ट गाना उनके नाम जाएगा। और साथ में हमारे कविता हैं फ्रॉम दिफ़ैया, कहते हैं एक गाना मेरे दोस्त मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला, शबीना और मालिनी के लिए अगर आप चला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ज़रूर। नेक्स्ट गाना जाएगा लवली मम्मा उमिला और सुरेश के लिए और ये गाना होगा टीना तूरी के नाम, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। आर वी, हाई, हाउ यू, कैसे हो? एंड विमला देवी जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। और साथ में जो गाना है ये डेडिकेट करते हैं हम आपके लिए, यहाँ पर हमारे साथ हैं जॉन लुसियल इच्छा, ओके, उन्होंने भी हमें टिकटॉक में ज्वाइन किया है और उनका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर कविलेश, अजय, ईशा एंड रंभा जी आपके नाम। निशा भवानी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम कहती हैं। नीरू जी लंच टाइम हो गया है तो चलिए लंच टाइम में आप हमारे साथ जुड़े हैं तो गाने एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच रोहित। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर सुल्ताना कंदाय कहती हैं कि मेरी भाई का बर्थडे है, किसका बर्थडे है? ओके, वंशिका, सब परिवार कंदाई और सबका मैसेज मुझे मिल गया लेकिन आपने भाव लिखा है। चलो आराध्या नमस्कार आपको, वेलकम आपको प्रोग्राम में, स्वागत करते हैं। एंड वी हैव विम विम तारामफुल जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेखा जी थैंक यू सो मच आपको। एंड कहते हैं यहाँ तरुण कहते हैं कि दिलवाले, अच्छा जी दिलवाले, चलिए वही दिलवाले जितने भी हैं हमारे साथ दे रहे हैं। पिया गंदसामी आपका भी वेलकम करते हैं। एंड चलिए चलते हैं एन इवनिंग इन पेरिस, पेरिस में सुनने वाले हमारे सभी लिसनर्स के नाम डेडिकेटिंग दिस ब्यूटीफुल सा गाना।
2: अजी ऐसा मौका

मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार। मौका फिर कहाँ मिलेगा।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम है सुहाना सफर, विदिता का साथ दे रहे हैं आप और हमारा टिकटॉक भी लाइव है, आप हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोइंसिडेंस हो गया, हमने गाना अभी चलाया, तरुण ने बोला कि प्लीज़ ये गाना चलाए, लेकिन बाद में पता चला कि ये गाना तो ऑलरेडी चल रहा है। तो कभी कभी होता है हमारी प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जो आप लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन वो गाना ऑलरेडी यहाँ पर होता है, तो वो गाना कभी कभी हम चला सकते हैं, चला लेते हैं, कभी कभी गाना नहीं चल पाता। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट गाना जो होगा वो हम अभिमान फिल्म से लेकर आए हैं और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं कल्याणी हरी कलावती जी, साथ में माधुरी जो एक दो तीन करके हुई आती हैं, दीप्ति गंदावरी जी का आज बर्थडे है, सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पूरी फैमिली की तरफ से, गंदावरी फैमिली की ओर से, और हमारी जो रेडियो मनोरंजन फैमिली है इनकी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। जज साहब हमें सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। यादव अमरेश, तैयब भोला, नेश और अक्ष, माया रामदोस, गचीना, सतीश बर्तन, साथ में हमारे हैं तस्मीन बंधु, ये भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और मनीता जी कहती है कि पेरिस में अभी मॉर्निंग है, हमारे यहाँ भी आफ्टरनून ही है, लेकिन हमारे दिमाग में हमारे गाने में तो इवनिंग हो गई है, अब हम करें तो क्या करें। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ हमारे गीतों के साथ दिन में भी रात होती है और हमें दिन में भी तारे भी नज़र आते हैं। हाँ, जब हमें गाने की फरमाइश आती है और वो गाना मिलता नहीं है ना, और जब आप आग बबूली हो जाते हैं तो हमें दिन में तारे नज़र आ जाते हैं, हम कोशिश करते हैं गाना जैसे मिले उसको चला दे, लेकिन कभी कभी गाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो प्लीज़ झेल लेना हमें, ठीक है। कौन सा गाना होगा, ये वाला, रंभा जी आपको ये गाना पसंद है, वैसे रोहित जी सुरीनाम से रितम भेज रहे हैं सबको। शमिला जी और अनिल त्रिभुजी का हम स्वागत करते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। आई नो, मैं प्रॉमिस करती हूँ और मैं प्रॉमिस निभाना जानती हूँ। हमारे जितने भी दोस्त हैं साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। केशनी कल्याणी सैकवा से उनके हस्बैंड कृष्ण के लिए गाना मांग रही हैं। वहीं पे हमारे साथ हैं प्रीति, करुणा, वजीहा एंड ग्रेस, और हमारे साथ हैं प्यारी सी स्वर्णा जो बहुत प्यार से हमें सुन रही हैं, और ये गाना खास आपके लिए जाएगा आपकी दी की तरफ से। एंड यहाँ पर मैसेज आया है कि आज मम्मा जो हैं इवनिंग तो निफ्यू के साथ ही गुजारेंगे, ना मम्मा का नाम लिखा ना निफ्यू का, कोई बात नहीं। सुपर गर्ल नमस्ते, स्वागत है वंशिका आपका भी। एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा आप सभी लिसनर्स के लिए जो कि साथ में हैं। करीना जी ने गाना मांगा है और आपने गाना मांगा है फ्रॉम द मूवी शान, प्यार करने वाले।

0: वाला गाना है प्यार करने वाले ठीक है ये गाना हम अगले आवर में चलाएंगे और साथ ही रहिएगा हम चलाएंगे ज़रूर और साथ में ये गाना जाएगा आपके लिए वेयर आर यू फ्रॉम ओके आप सुन रहे इस समय रेडियो मनोरंजन मॉरिशस मॉरिशस का जो रेडियो चैनल है आई मीन हमारे तीन चैनल्स हैं नॉर्मली हिंदुस्तानी का आप रेडियो मनोरंजन सुन रही हैं एमबीसी का तो साथ देते रहिएगा एंड सुनते रहिएगा एंड वी हैव साहिल हाय साहिल कैसे हो आप साथ दे रहे हो थैंक यू सो मच एंड साथ में यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आप लोगों के लिए जो कि साथ में है हमारे एंड यहाँ पर कहते हैं गाने सुने जी ज़रूर सुनिएगा सुरीनाम में कहते हैं यहाँ पे सुबह के 5:42 हुए हैं रोहित सीरियसली इतने जल्दी जाग गए आप काम पर जाना होगा शायद है ना मिस्टर रेजा हाय कैसे हैं आप चलिए उनके लिए गाना सलोनी गयादीन का भी हम वेलकम करते हैं एंड बबीता का वनीसा का और साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पर मेरे पास 99 से ज़्यादा मैसेजेस हैं आप अभी मुझसे गाना मांग रहे हो पहले बता तो दो कि कौन सा गाना है अभी नीचे जाते जाते भी बहुत टाइम है मुझे 99 मैसेज पढ़ने पड़ेंगे फिर उसके बाद शायद आपका जो डेडिकेशन होगा वो मुझे पढ़ने का टाइम मिलेगा सो प्लीज़ अगर आप लोग गाने की फरमाइश करें तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा है ना जयविन शीतल आपका हम वेलकम करते हैं एंड हेलो जी मिसेस कैसी हैं आप स्वागत है आपका
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: वैसे हमारे पास वक्त अभी बहुत कम है, हम एक बजे के समाचारों की ओर बढ़ने जा रहे हैं। एक कॉलर है, इनसे मिल लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
1: जी। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप गायत्री जी?
2: मैं ठीक हूँ बेजीता जी, आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ गायत्री जी, बताइए क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: हाँ, मैं फिल्म लव इन टोक्यो का
1: कौन सा गाना?
2: मुझे तुम मिल गए हमदम।
1: ठीक है, मैं गाना आपके लिए चलाऊंगी एक बजे के बाद। अभी नेक्स्ट गाना हमारा शुरू हो गया है, जिसके साथ हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, शुभ दिन।

0: के एक बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था, नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजिकल बदलाव गतिशील बना रहा है, जहां आईसीटी मंत्री अविनाश रामतोहल के मुताबिक इन पिछले महीनों के दौरान फिनटेक में काफ़ी गति आई है और साथ में भारी संख्या में लोगों की ओर मोबाइल की ओर से मोबाइल पेमेंट किए जा रही हैं। इस तरह मूल ढांचों को सुदृढ़ करने और वित्तीय मंच को सुरक्षित रखने पर प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऑफ मॉरिशस का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। पर्यटन के अलावा मेडिकल हब स्ट्रेटजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। पहले से ही मॉरिशस की कई उपलब्धियां हैं जिनसे इस उभरते सेक्टर को विकसित किया जा सकता है। ये नीति तीन प्रमुख पहलुओं पर टिकी हुई है: विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी पर काबू है। जी हाँ, अस्पताल और का कहना है और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट गई है। फिर भी इस बात पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि समुद्री मार्गों में बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुंचाए जाने में देरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार चौथे दिन दुनिया की का सबसे गर्म शहर रहा। कल यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले मंगलवार को तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस था। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए कई स्थानों पर भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों के लिए येलो और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। लातू लेन वाकुआ में 87 साल की 87 years old की श्रीमती विद्वती दुंदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुसा, उनकी अर्थी आज सुबह 3

0: बेजे उनके बेटे राजेश धुंधे के मकान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोमा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: कपड़े धोना भूल जाए, खाना बनाना भूल जाए, अगर खाना बना रही हो तो चूल्हे पर रख के भूल जाए, गाड़ी चलाए तो रास्ता देखना भूल जाए। ना बाबा ना, ऐसा मत करना। दिन के 1:08 हुए हैं, 21st of May। हेलो, नमस्कार, आप सभी को कहूँगी वेलकम, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। एंड इससे पहले कि मेरे मैसेजेस की लिस्ट और ज़्यादा लंबी हो जाए और मुझे पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिले, नेक्स्ट गाना हम रागिनी रोहन नंदा जो कि पाई में हमें सुन रही है, उनके बेटे अभिषेक आज 38 years की हो गई हैं, उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। वी हैव सूर्या फ्रॉम फीजी, नम्रता, पूजा, यश एंड रुकेश, एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं अंश, उनकी दादी ललिता, उनकी सिस्टर के लिए गाना होगा फदिव्या। जमुना मंगर हैं पीतों से। वी हैव जीत, आरजी हंसनी हमारे साथ हैं, हाय। चलो जी, बहुत सारा प्यार है उनके लिए। नम्रता, उनके हस्बैंड अखिलेश के लिए गाना मांग रहे हैं, उनकी मम सुनीता जो फौजी साक से हैं, पुनाए फैमिली लालमाटी से हैं। रमेश लिस्निंग टू रेडियो मनोरंजन फ्रॉम मलेशिया, हमारे टिकटॉक पे लाइव है। वी हैव डोरा लीना, शीतल शर्मा फ्रॉम फीजी, एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा मिस्टर अफसल गुदा के लिए जो हमें सुन रहे हैं। मौसम का हाल सुनिए, यहाँ पर आज मौसम ऐसा है कि गाने बड़े कमाल के बरसने वाले हैं। चलिए जी, तिवारी आपके लिए गाना होगा, प्रेमा नायको, रोशनी प्रसाद फ्रॉम फीजी आइलैंड्स, मानू, हेलो। वी हैव शारदा लखनऊ, शारदा रिसोल, राधा, मधुबाला खान, हेमा, विमला, तान, संध्या, फूलचंद, नासिम, शिवम, प्रेम, टीना उनके हस्बैंड कुणाल के लिए गाना मांग रही है। वहीं पे हम आशा के लिए गाना डेडिकेट करते हैं, बबीता, नेहा, निलानी, कैसे हो, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, साथ दे रही हैं आप हमारे, एंड इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशा जी, आपका तो हमने स्वागत कर ही दिया, एक बार फिर से स्वागत कर ही देते हैं। तो इतने सारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, अभी फरमाइश में कहीं पर खो रही हूँ आपका, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस के बीच अगर आपने कोई मुझे गाने की फरमाइश की है ना, तो वो तो गया।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर।
0: ये है सुहाना सफ़र। हमारे हम सफ़र हमारे साथ हैं, कुछ हमारे साथ रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जी, यहाँ पर ज़ैबा का वेलकम करते हैं, मेरी ग्रेस एजे, एंड नेक्स्ट गाना होगा फॉर सासुमा नैना। जी हाँ, नहीं, नैना का जन्मदिन है ना। हाँ ओके, तो यहाँ पर उनकी ननन अनिष्ठा, अंजू सोनी उनकी सासू मॉम हैं, उनके ससुर हैं विजय और उनके पति विनेश, की ओर से आपको प्यार और हैप्पी बर्थडे। शैला बाबू राम हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं, थैंक यू जी। और माया राम दोस्त कहते हैं मेरे नातिन घर पे हैं, एक सुंदर सा गाना उनके नाम सेजल और वेदिका। अच्छा वेदिका, क्या बात है, थोड़ा इधर उधर होता तो वेदिता भी हो जाता। चले यहाँ पर ममा शर्मा पापा दैदों के लिए गाना होगा, ये मियाँ की तरफ से है। सारिका का मैसेज आया है, आपने गाने की फरमाइश की है और साथ में यहाँ पर आपने कहा कि भाई आपने तो मेरा फेवरेट गाना चला दिया। सच्ची मुच्ची अच्छी लगता है, अच्छा लगता है ना जब आपका फेवरेट गाना आप सोचते हैं और वो गाना चल पड़े। तो टीना जी आपका वेलकम है, सबका वेलकम करती हूँ मैं, एंड आई एम रियली सॉरी। प्रणाम संजय ओमी, हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है प्रोग्राम में अभी सारे के सारे जो मैसेजेस हैं उसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अनुराधा जी स्वागत है आपका, एंड यहाँ पर मेरे साथ साहिल हैं और साहिल बहुत ही प्यारा सा बच्चा है हमारा, जो रोज़ हमारे साथ जुड़ा रहता है, रोज़ रोज़ रोज़ आता है हमारे साथ और हमारे ये प्रोग्राम में चार चांद लगाता है अपनी बातों से, अपने मैसेज से सबको प्यार भेजता है। सो थैंक यू सो मच साहिल। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं लीना के लिए, ये एक अलग लीना है जो साथ दे रही हमारे, एंड साथ ही साथ ये गाना जाएगा आपके लिए। रेशमा, रेशमा जी कैसी हैं आप? और मनीता जी तो गाने एंजॉय कर ही रही हैं और उन्होंने कहा आनंद फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद आया।
2: RM3 रेडियो, रेडियो

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सुहाना सफर वीरिता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन है हमारे साथ जो हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिमा, मोहबल, जय, विश्वानी, उनके लिए गाना होगा। डैड आनंद और सभी जरी फैमिली के लिए, ममा इंदिरा, चंद्रानी, रॉ, रेशमा, इन सब के लिए गाना होगा। फॉर काव्या जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे दोस्त हैं, नाम तो नहीं लिखा। चलिए यहाँ पर यश हमारे साथ फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड। हाय यश, कैसे हो? चलो जी, एंजॉय करते रहो गाने, हमारे साथ झूमते रहो, और मेक श्योर कि आप लोगों का मूड अच्छा रहे, किसी का मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। गाने कुछ ऐसे होना चाहिए जिसे सुनकर इंसान खुश हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ हैं टू माई लव सूरज, अभी काम करें क्यूपिप में, और मैसेज है फ्रॉम रेशमा ऑफ पॉम्प्लेमस। चलिए, आपका मैसेज पहुँच गया। और गाने की बात चली है तो ये वाला गाना कैसा रहेगा रफ़ी साहब की आवाज़ में? मेरे फेवरेट गीतों में से एक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: भाई हमने तो बस गाना लगाया, गाना इतना हमारे प्रोग्राम के साथ झूम उठा है कि खुद बरसने लगा है। दीप्ति जी कह रहे हैं कि आपने गाना लगाया, यहाँ पे बारिश तो शुरू हो गई। भाई चलो आप झूमो और बारिश में थोड़ा इंजॉय करो। नेक्स्ट गाना होगा एंड कुलोचन एंड पमेसर फैमिली के लिए जो मापू में है, ये साहिल की तरफ से है मैसेज। और संजय बुधवा हमारे साथ हैं, कहते हैं कि थैंक यू सो मच, गाने उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनका अच्छा लग रहा है। अनुराधा वैदेही एंड साथ में किरण कतोना, सुनीता मिलानी, सॉल साहब, वी हैव शिवानी जीवासन, किरण और सुपरमैन उनके लिए भी गाना होगा। और साथ में विनीता के लिए गाना होगा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तो एक्सक्यूशन चल रहा है कहते हैं। चलिए जी, उनके लिए गाना होगा। साहिल हमारे साथ और विहा बबीता बुलाकी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुराधा बस गीत, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसा करते हैं, गाना जो है आपके लिए डेडिकेट करते हैं। अभी नेक्स्ट गाना हमारा आ रहा है, बहुत ही प्यार से लेकर आ रहे हैं, और गाना होगा आपके दीवाने फिल्म से।

0: और ये फरमाइश आई है खान की तरफ से, और मिस्टर खान हमें कुवैत से सुन रहे हैं, अकेले हैं कहते हैं, गाने सुनकर फैमिली को हम याद कर लेते हैं। तो शांता और सलोनी, सल्लू खान, कविता, नून, सबके लिए ये गाना पेश है।
1: ये नाम दे दिया।
0: और मिस्टर बाबा कल दियूफ हमें सुन रही हैं सेनेगल से। हेलो।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग खान को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे इस गाने के लिए, इन्होंने तो सबका दिल जीत लिया। रेनू लाल, हिमेश रेशमिया, स्वस्ति, रजनी महावीर और जय मंती के स्पेशली ये जो हमारे प्रोग्राम का अगला गाना है डेडिकेट करते हैं उनके नाम।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र और गाना मुझे पता है आपको जरूर पसंद आएगा। सबरीना, आपके लिए गाना।

0: हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को और जब तेरा प्यार नहीं मिला तो बस खत्म हो गया कहानी
1: सुहाना सफर
0: लेकिन सुहाना सफर में कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे कहानियाँ शुरू होती हैं दोस्ती की। और ये जो फैमिली है हमारी, इनको हम कहेंगे थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए भाई, यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। हेलो NTR, कैसे हो आप? हाय गिरीश, वेलकम, स्वागत है आपका। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे अभी आप सभी लिसनर्स के लिए। कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना चला दिया आपने। मैंने बोला ना कि मैं गाने चलाती हूँ, फेवरेट आपका होता है और प्रोग्राम में शामिल भी हो जाता है। यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, ये शोभा जी ने मांगा है गाना, अगला गाना उनके लिए। बहुत सारा प्यार मिलता है हमें यहाँ पे, टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं। डोंट फॉरगेट टू

लाइक हमारा लाइव और क्या ही बताएं हम खूबसूरत गीतों के सफ़र में. अभी अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब कौन सा गाना आने वाला है. वैसे इस गाने की फरमाइश की गई थी जैसे को तैसा, किसी ने कहा कि बारिश हो रही है तो हमने सोचा कि चलो चला ही देते हैं. यहाँ पर मिस्टर द्वारका उनके लिए गाना मांगा गया है और यहाँ हमारे साथ गाना सुन रहे हैं कौन. आपने भी गाने की फरमाइश कर दी तो ये बहुत सारे लोगों ने गाने की फरमाइश की है आज. लेकिन चलिए अगले आवर में देखते हैं. सिया का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में. और यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा कविता जी आपके लिए भी वेलकम है आपका, स्वागत है आपका. चलिए साथ में गाना सुनते हैं. और वैसे भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, जैसे ही फ़ोन उठाओ तो फ़ोन कट जाता है, इसके आई एम रियली सॉरी. ये गाना भी आपको मूड में लेकर ही आएगा. जहाँ बरसात हो रही है वहाँ ऐसे गाने चले ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: हमने गाना लगाया क्योंकि इन्होंने बोला कि बारिश हो रही है। अभी बहुत सारे मैसेजेस की बारिश होने लगी है। देवी, देवराम, रामलगन, दिलवंती सब हमारे साथ हैं जना है प्लाक से। और यहाँ पर रागिनी जी कहते हैं पुतगदो में तो जोरों की बारिश हो रही है, कोई तेज में भी बारिश हो रही है। और वहीं पे सिया जो घर पे दाल पिठा बना रही है पंजाबी स्टाइल, कहती है कि भाई दाल पिठा गरम गरम खाने का बारिश के इस मौसम में। अच्छा, गुडलैंड्स में भी बारिश हो रही है, क्या बात है। तो चलिए आप सबों को कहेंगे बोना पीछी और रिमझिम गिरे सावन चला दो। ये भी यहाँ पे मैसेज आ गया। और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पे उनको तो आग लग ही जाएगी। गाना नहीं सुना तन रिमझिम सावन गिरे और आग लगे, पता नहीं कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गड़बड़ हो जाएगी बहन, ऐसा मत करो। चलो अब जहाँ पे बारिश नहीं होगी वो बेचारे तो अलग फील करेंगे ना। दिनेश गोपी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
4: डन
3: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना।

0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: सफर। चलिए हमारे लिसनर्स जब आते हैं तो यहाँ तो बाहर ही बाहर हो ही जाती हैं। चलिए मैं आपको एक मौका देती हूँ, आप इतने सारे लोग हैं, आई थिंक 14K इतने सारे 14,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय हमारे लाइव के साथ। यहाँ MBC जो है आपको मौका दे रहा है हेलीकॉप्टर राइड के लिए, तो अगर आप हेलीकॉप्टर में राइड करना चाहते हैं बहुत ही आसान है। MBC ने लॉन्च किया है अपना नया, जी हाँ, MBC प्ले, नया वाला 1.0 MBC प्ले 1.0। आप जब ऐप स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा MBC प्ले 1.0। आप उसको डाउनलोड करो और फिर उसके बाद आप उसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर क्या होता है आपको एक मैसेज आएगा MBC से, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लो और 5499-1294, जी हाँ 5499-1294, या तो फिर इस नंबर में 5250-6200 पे आप भेज सकते हो और मैं आपका जो नाम है नोट करके टोकरी में डाल सकती हूँ, जहाँ पर आपको मौका मिल सकता है एक हेलीकॉप्टर राइड का।
2: टाइम चेक, इट्स 2 PM। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ आस्था, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजिकल बदलाव गतिशील बना रहा है। ICT मंत्री अविनाश रामतोहल के अनुसार इन पिछले महीनों के दौरान फिनटेक में काफी प्रगति हुई है और साथ ही भारी संख्या में लोगों की ओर से मोबाइल पेमेंट किए जा रही है। इस तरह मूल ढांचों को सुदृढ़ करने और वित्तीय मंच को सुरक्षित रखने पर प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रदान करने के लिए मैको मॉरिशस का सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है सरकार। अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए एक टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के लिए भारी उम्मीदें रख रही है। विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। महोबाकुआ जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए हैं। देश के सबसे बड़े जलाशय का निर्माण 1885 में किया गया था और आज इसके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में अहम कोशिशें जारी हैं, क्योंकि पहले से ही मिट्टी के कटने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से, वन विभाग की ओर से भी एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वहाँ पर नए पौधे रोपे जा रहे हैं। भारत में गर्मी चरम पर, पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा लगातार में वहां पर चौथा दिन सबसे गर्म रहा, 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान रहा है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए कई स्थानों पर भीषण लू का अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों के लिए भी येलो और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
4: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 2:10 हुए हैं, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। चलिए जी, यहाँ पर हमारा जो अगला गाना होगा वो फरमाइश की गई थी, विमल जी हमारे साथ स्टूडियो में है, चेक करें। अच्छा, लाइव हो रहा है, उनको भी पता चलना चाहिए ना कि कितने सारे लोग हैं हमारे साथ जो लाइव में जुड़े रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम यश के लिए गाना डेडिकेट करते हैं, साथ में कविता अनु सैपिया में कहते हैं बारिश हो रही है, क्या बात है, बारिश हो रही है। ओके, विमल जी से पूछते हैं, विमल जी बाहर बारिश हो रही है? कहते हैं आप बाहर आके देख लो। यहाँ पर सुबह हमारे साथ हैं, साधना शिरीन सब साथ जुड़े हुए हैं, कविता अनु जी बहुत सारा प्यार है आपके लिए, थैंक यू जी। और देवांश इक्वायोस से हमारे साथ हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गानों को एंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा हेलीकॉप्टर राइड के लिए नंबर कौन सा है, नंबर है 5250-6200। साहिल ने यहाँ पर नंबर जो है बिल्कुल लगा दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एंड चलिए जी, यहाँ पर गाना किसके लिए होगा, गाना होगा इनके लिए, इन्होंने हमें कॉल किया, इनसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कौन है हमारे साथ। देखो भाई, जैसे हमने फ़ोन उठाने की कोशिश की यहाँ पे लाइन कट जाती है, ऐसा ही होता है, तो क्या करें, अभी आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाना होगा आपके लिए मिस्टर पैंटर। चलिए जी, आपके लिए गाना मांगा था किसी ने, और ये है कौन सा गाना, हाँ शान फिल्म का गाना है, आपने मांगा था ना।
2: RM3 रेडियो।
1: प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से, जितने भी दोस्त हैं। शर्मिली जी आ गई, शर्माती शर्मिली जी, क्या बात है, चलो जी एंजॉय करो। मुस्ताक खान कैसे हो, बड़े टाइम के बाद हमें याद किया, वेलकम वेलकम वेलकम। प्रोग्राम अभी जारी है, 3 बजे तक आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और नेक्स्ट गाना होगा आप सभी दोस्तों के नाम जो प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरने का नाम मत लेना अभी।
3: शुक्रिया, करम, मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है,

0: वाह क्या बात है।
1: सफर
0: 2:18 हुए हैं। वेलकम रेडियो मनोरंजन RN3 में आपका स्वागत है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अब मैं फरमाइश नहीं ले रही हूं, अब यहां पर सिर्फ आपके डेडिकेशंस चलेंगे क्योंकि अभी हमने बहुत सारे गाने चला दिए हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट है इसको मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट गाना मिला दी बिदीन केतिका कहती हैं कि आज उनकी नीस रोहिका का बर्थडे है तो उनके लिए जो नेक्स्ट गाना होगा वो डेडिकेट करेंगे। और हमारे साथ करुणा जी हैं, रेखा लखन जी हैं। चलिए जी, जो गाना आपने मांगा है उसको या तो फिर कल या परसों चलाएंगे हम, लेकिन अभी के लिए तो चलिए हम नेक्स्ट गाने के साथ मूड को बदलते हैं। अभी क्या है ना कि 2 बजे के बाद खाना खाने के बाद सारे लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा लेजी फील होता है। आपकी लेजीनेस को दूर करने के लिए अब हम मूड को थोड़ा बदल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 80s और 90s के एक दो गाने तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन वो गाने होंगे जो काफ़ी हद

0: तक फेमस रहे हैं और अभी के लिए तो हम यही कहेंगे कि आप साथ हैं, साथ देते रहिए और यहाँ हमारे प्रोग्राम में जो हमारे खूबसूरत गाने हैं इसके साथ झूमते रहिए।
1: RM3 Radio.

0: you're listening RM Free Radio. Radio.
1: चलिए जी, यहाँ पर सारे हमारे दोस्त लगे हुए हैं, स्क्रीनशॉट करके भेजना है आपको 5250600 पर। हेलो किरण, कैसे हो आप? वेलकम लैला मुदारन, आपका भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, शामिल हो गए हैं आप हमारे सफर में, थैंक यू सो मच।

0: RM3 Radio.
1: चलिए जी, यहाँ पर बिंता, प्रतिमा, जय स्नेहा, जय श्रेया का वेलकम करते हैं। प्रेमा, श्यामा, रिया, प्रिया, जिमी एंड यास्मीन, एंजॉय करें प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। यहीं पे हम वेलकम करते हैं अनुष्का का, प्रोग्राम सुन रही हैं और साथ में गाना जाएगा जिमी की तरफ से फॉर रोशनी दयाल, जो कि हमें सुन रही हैं। हेलो, कैसे हो आप? और हंसवी का भी वेलकम करते हैं।

0: दिल लेना खेल है दिलदार का. दैट वाज अ ब्यूटीफुल मॉन. आर डी बर्मन की आवाज में आप सुन रहे थे अभी खूबसूरत सा गाना. क्या करें, गिरवर हमारे साथ, परवीन गोशबुहिन फार्मेसी में हमें वानिसा सुन रही है. कहती है प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर अस. ओके वानिसा, इट्स फॉर यू एंड फॉर योर टीम. और यहाँ पर खान कहते हैं कि हम भी मूड में आ गए हैं. हेलो फिरोज, कैसे हैं आप? जिमी थैंक यू सो मच. विमुक्ति हमारे साथ हैं फ्रॉम श्रीलंका, हमें भेजा है बहुत सारा प्यार. थैंक यू श्रीलंका, वी लव यू श्रीलंका. चलिए इसी के साथ गाना होगा आपके नाम.
1: RM3 रेडियो.
0: वैसे माधवी दूमर हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हुई हैं और साथ ही में यहाँ पर माया जी कहती हैं मूड बन गया इस गाने के साथ, एंजॉय करते चलें.

0: क्या बात है क्या बात है, इतना जोश आ गया कि होश खो बैठे हम।
1: सुहाना सफर।
0: अब लगता है कि सफर सच में बहुत ज्यादा सुहाना बन गया है। हमारे साथ इस समय 26,000 लोग जुड़े हुए हैं, उससे कई ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे टिकटॉक के साथ, हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू पुट अ लाइक। एंड यहाँ पर हमारे साथ जिमी है, कहते हैं रहीम, अनवर और सुनीता के नाम गाना चला दीजिएगा, थैंक यू। और माया जी कहती हैं कि विदिता जी भूखने लगी हैं, हमारे यहाँ तो गर्म गर्म चाय और जो पेंग रही है, हम आपको याद कर रहे हैं, आपने याद किया, हमारा पेट भर गया, थैंक यू सो मच।

आज आपने कम से कम याद तो किया, इतने सारे लोगों में से इन्होंने ही याद किया हमें। चलिए जी, नेक्स्ट गाना किसके लिए होगा? ये गाना होगा मिमी के लिए, साथ में फॉर माई क्वीन। हेलो, और अभी तो हम जो गाना है डेडिकेट करेंगे आपके लिए, कौन है हमारे साथ? देव एंड बीना। देव एंड बीना हमारे साथ अभी हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू, साथ देते रहिएगा। गाना कौन सा होगा? अरे सुनिए तो सही, अब इतना मूड सेट कर दिया हमने तो हम रोने धोने बैठे, थोड़े ना रोने धोने बैठेंगे, अभी मूड आ गया है तो इसी मूड में रहते ना।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और ये अगला गाना होगा मोहिनी के लिए और चंदनी के लिए जो साथ दे रहे हमारे. और जैसा हमने कहा था कि आप MBC Play का जो प्ले स्टोर में आप इस ऐप को ज़रूर MBC Play को 1.0 को डाउनलोड करें और क्या पता आपको मौका मिल सकता है हेलीकॉप्टर राइड के लिए.

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच राजेश जुजन जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. एंड अब तो हमारे जाने का समय हो गया. फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया आपको. एंड लीना बाय. स्वीट बहुत ही स्वीट मैसेज आपने भेजे हैं. थैंक यू सो मच. सना होलैंड से साथ दे रही हैं. बाय सना. चलिए चलते चलते ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं. मिलते हैं आपसे मंडे को. बहुत सारा प्यार. बाय. ठीक है.

0: time check. It's 3 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ आसान. नमस्कार आपको.
1: नमस्कार. सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक सहायता में बदलाव लाया जाएगा. अब एक नई इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव है जो मौजूदा 15,000 रुपये की डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी. इस नई सहायता में व्यक्ति के हैंडीकैप और उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा. ये बात सोशल इंटीग्रेशन मंत्री ने 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहयोग पर आयोजित एक सिंपोजियम में कही. पिछली कॉन्ट्रियानो और बगातेल में कभी वीरान पड़ी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है. शुगरकेन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सरकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हैं. साथ ही लंबे समय से कम उत्पादन और कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे खेतीहरों को भी सहयोग दिया जा रहा है. अज़रबैजान में राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में हिस्सा लिया. इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों लोग अभी उचित आवास सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने अधिक समावेश और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर भी जोर दिया. मॉरिशस के सरकारी अस्पतालों में इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है. पिछले 2 हफ्तों में 2 विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर मॉरिशस आए हुए थे जिन्होंने यहाँ की मेडिकल टीमों के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा किया. दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल मगारी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉसन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई प्रक्रियाएं की गई. इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य सेक्टर के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है. दुनिया की नज़रें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है. दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है लेकिन दबाव में झुकने वाला नहीं है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई.
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: तो जितना जना हमने के सुनत हवन देखत हवन आप सबको के नमस्ते स्वागत बाटे आज की चर्चा कार्यक्रम में। आज बिफे के दिन है और आज के दिन बहुत ही खास है, काहे कि आज हमने एक

0: जो न खाली हम नहीं तू नहीं सब कोई के कोसे निकरीला वह परिवार परिवार में जन तुहर माँ बाप बाटे लैका फैका बाटे पति बाटे पत्नी बाटे ढेर जना बाटे तो परिवार के कौन महत्व बा हमनी के जिंदगी में और परिवार कोची कोची से बनेला इस पर तनी हमने चर्चा करब जा और हमने के आज के विशेष मेहमान हवन इंकरा जानेलन हमने के सहयोगी हवन हमने के संगतिया हवन हमने के बहन हवन एगो माँ हवन तो चला इंकर से तनी सुन हमने रूबरू हो ला जा और हमने के परिवार वो हवन आप हवन हमने के वेदिता वेदिता नमस्ते
1: नमस्ते नितुषा सभी हमने के दर्शक लोग के सभी हमने के श्रोता लोग के प्यार भरा नमस्कार। वैसे जब बोला हमने के परिवार हवन तो हमने के रेडियो के परिवार
0: जी
1: ये भी हा हमने जब परिवार के बारे में बतियाई ला जा तो सब कोई सोचेला परिवार हा माता पिता भाई बहन खून के रिश्ता। लेकिन अगर सही मायने में देखा तो कभी कभी जो खून के रिश्ता हा ओकर ले बढ़ के हमने के पड़ोसी रहला वो भी हमने के परिवार बन जाला। हमने के काम में हमने के जो सहयोगी हवन जा वो लोग हमने के परिवार बन जाला। कहे के जब काम में जानत हुआ काम में आप सबसे जस्ती समय बितावेला और एगो ऐसा जगह जहाँ पर आप काम करत हुआ हुआ पर तोहर जो सहयोगी लोग बा वो लोग आज तोहर परिवार बन जाए।
0: हाँ जो रिश्ता बन जाला ना वो कबो कबो हमने के जो खून के रिश्ता हुआ से उकर से बड़ा हो जाला।
1: बिल्कुल। और आप जानत हुआ कि जब भी हमने बात करी ला जा हमने के रेडियो के बारे में हमने काम करी ला जा रेडियो मनोरंजन में रेडियो मॉरिशस में रेडियो मस्ती में और जब
0: दूसरा जो चैनल बाटे
1: हाँ लेकिन यहाँ पर जब हमने संगे काम करी ला जितना हमने के अजय लोग हवन जा जब हमने बतियाए ला जा तो हमने हमेशा बोली ला जा ये हमने के रेडियो के परिवार है
0: जी
1: काहे परिवार बोली ला जा काहे कि हम यहाँ पर अपना बनबा
0: जी
1: और हमने के सब कोई के ये रेडियो जुनबा सब कोई के बांध के रखेला। जानत हो जब काम में तोहरा चोट लग गल तो क्या आवेला अब घरे से टेलीफोने कर बा परिवार
0: कोई क्या नहीं आए
1: के आए हमने के हिये के परिवार आवेला। अभी हाल में हमने के कितना अभी एग्जाम मिलल बा है ना तो ये सब जब हमने परिवार के बारे में बतियाई ला जा तब परिवार चाहेला हमने के हर जगह रह के हाँ अलग अलग मायने बा हमने अब कैसे बोला जा कि जमीन जायदाद के हिसाब अपन सहयोगी के तो नहीं देवा ना ये अलग बात है। लेकिन जब हमने अब घर में बतियाई ला जा कि हमने के परिवार कैसे रहेला तो ये हमने के काम में भी रिफ्लेक्ट करेला जो संस्कार तोहरा तोहर माता पिता देवेला तोहर परिवार से तोहरा मिलेला कैसे एगो इंसान हवा कैसे तोहरा बोले ना शेप अप करे लन जा तोहरा
0: तो माँ बाप की बात करत हुआ वेदिता हमने अभी आवत हफ्ता ले हमने मनाब सा मदर्स डे माता दिवस एक पर तो हमने बतियाब सही पर जब माता पिता के बात करत हुआ तो उकर महत्व कहा परिवार में
1: एगो माता पिता तोहर खातिर जो सकी करे वो दुनिया में तोहर खातिर और कोई नहीं करे।
0: बोलल जाला भगवान सगरो नहीं रहेलन तभी तो माता पिता के विदा कर ले।
1: बिल्कुल हवे खातिर तोरा बोलत है।

0: माता पिता के विदा कर ले हवन।
1: बिल्कुल हवे खत्म तोरा बोलत है
0: जो एक्सपीरियंस बातें शेयर करे के मन बातें कुछ पूछे के बातें तो हमने के लाइन खुलल बातें 402-85-85 परिवार के बारे में आज हमने बताया था जा तो वेदिता हमने जब परिवार के बात करे थे जा तो जो प्रेम बातें जो अपनापन बातें जो एकता ओकरा बनाए खातिर कुछ चाहिला करे के।
1: देखा सबसे पहले हम जानिला कि घर में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़का लोग कुछ सीखेला अपन माता पिता से सीखेलन जा
0: जी
1: ना। हम कौन चीज सीख रहे हैं हमके दुनिया भर से प्यार मिलेला
0: बोला जाला हमने के जन घर बातें हमने के जन माता पिता हमने के जन हाउ परिवार वा बातें
1: पहला स्कूल
0: वही है
1: पहला स्कूल हुआ जो न अपन माता पिता तोहर सिखाए हवे तोहर संस्कार तोहर रहेला ढेर कोई के दिखबा बोल जब ढेर कोई के दिखबा तो पहला मुलाकात में भी पता चल जाला शांत स्वभाव के बा हाँ माता पिता शांत हो सकेला। जरूरी नहीं बा ई भी सकेला हो कि परिवार में जोन बा ऐसा समस्या भी सकेला हो कि धीर कोई शांत हो जाला। शांत हो के मतलब ई नहीं है कि अच्छा बा कि कोई शांत बा जाता शांत के पीछे बहुत कारण भी
0: रहेला
1: बहुत कारण रहेला। धीर कोई बचपन से कैसे बोला अब्यूज जो लड़का लोग रहेला वो लोग शांत रहेला धीर कोई के सिखावल गल बा वो लोग के जो पीस ऑफ माइंड बा मानसिक जो लोग के तनाव नहीं बा वो लोग ई प्रकार से शांत रहेला जाता। शांत जब बोली ला जा तो धीर को कारण रहेला कि एगो इंसान जो बा एगो मनुष्य जो बा वो शांत रहेला है ना। अब स्कूल में जाइबा कई गो जिले में रहेगा क्लास में
0: तो 40 बातें
1: अब सोचा 40 चलो 20 ले लिया जाए अब 20 गो लेगा मैं सब पारे ही नहीं रहेगा
0: देखा एगो हाथ में 5 गो उंगली बा ना
1: दुर्गा जेबा लेकिन कहा जेबा
0: जब सब एगो मुट्ठी बन जाला तब एगो लाफोस बन जाला।
1: बिल्कुल तो हमने के जो परिवार बा हमने के परिवार भी ऐसने हा
0: जी
1: तब हमने के परिवार में हमने देखा बड़ा होने जा दादा दादी चाचा चाची हम तोहरा एगो बात बोलब हम जब कॉलेज जाए लगली तब हम जननी वाजें कौन छिया हम कबो नहीं जानते वाजें कौन छिया हम तो जानते थे हमारे चाचा है ये हमारे चाची है हमारे फूफू है हम तो घर से निकलब चाची लगे जा वाजें लगे जाते नहीं हुए खाते ली हम
0: हाँ।
1: जब बैठा होकर लगे खाना बना के शुरू करी तब बैठ के यानी माशों करते नहीं होकर लगे बचपन से यानी माशों करते नहीं हम कभी भी याद बा हमारे हाथ में भिंडी रही बैंगन रही कुछ रही मिको बना दुआ बोला हमने के बताओ तो आप कौन चीज करत हुआ कौन चीज दालत हुआ तो ऐसे करके हमने बढ़ाओ नहीं जा तो अभी भी वो जो प्रेम बा वो जो हमने इज्जत दे ला जा वो अभी ले बा अभी ले हमने मानी ला जा कि हमने के जो वाजा लोग हवन जा जेकर आगे हमने बढ़ा हो नहीं जा वो लोग के हक बा हमने पे हमने के डांटे के कुछ मूवे कर ला कुछ नहीं ठीक से बोल ला हमने के हक है लैकवा के डांटे के त ऐसा हमने संस्कार से बढ़ाव ले जा।
0: इस सच्चे बात बोला था पर आज जमाना जो बातें वो बदल गल बातें काफी बदल गल बातें आज तक घरे हुआ लड़का की लेता नहीं मिलता अपन माँ बाप से बताए के जैसे लिकुल से आवेला घुस जाला अपन कमरा में अपन पोता में हमने इतना डेवलपे हुए था ऐसा पर कबो कबो हमने सोची ला जा हमने देखा दे हुआ था ऐसा जो सोचबा था
1: हवे तो द्वारा बोला था कि जब हमने छोटा हमने जैसे बड़ा हो ले जा हमने अपन वाजे के अपन परिवार मान के चलने हैं जा अभी हमने के परिवार में हाँ माता पिता और ओकर दुगो लड़का अभी तो दुगो लड़का नहीं अभी तो खाली एक गो लड़का बा
0: जी
1: ना मानत हुआ आजकल देखबा कि जो कपल्स लोग हमन जा वो लोग बोले हम जा हमने के तो लेता नहीं बा लड़का के देखी लड़को हुए भी बात आगे के लड़का लोग दादा दादी संगे बड़ा होलो जा ना दादा दादी कहानी सुनैन जा पकैन जा तो तोहरा सिखैन जा अभी तो हाथ में मोबाइल चलाल बा
0: न्यूक्लियर फैमिली से हमने कहाँ कहाँ पहुंच गए ली सर जैसे बोला था वो आगे तक भर सब परिवार रहल फूफू चाचा दादी सब लोग एगो घर में रहत रहन सा खात ललन सा पियत ललन सा आज तक लेता हुई नहीं मिलता कबू कबू जब देखबा तो दुख की बात है पर इस सच्ची बात है कि एगो घर में माता पिता वो लोग काम करके आवत हवन सा लड़का काम लिकुल से आवता न तो काम करके आवता ओकरा भूख लगल जाए बाहर खाए न तो अपन कमरा में खाए माता पिता लोग अपन अपन वो लोग अपन काम करत हवन सा तो हाउ जो संस्कार वा बातें चाहे ला फेरों से बांधे के आने के।
1: अच्छा एगो तुम्हारा एगो सैंप जॉब दिला अभी जब हमने दिवाली मनाए ला जा तो हमने को तीन कार जो हमने के मिठाई बा कुछ कर ला जा ऑर्डर कर ला जा ना कहे लेतो नहीं बा मिठाई बनाई की जबकि हमने हवे लड़का है जा जो अपन हाथ से मिठाई बना ले हैं जब बचपन में
0: तो दूसरे में सेटिस्फेक्शन हो
1: कहे कहे कि माता पिता दादा दादी भाई बहन सब कोई मिलके बनावत हल काहे आगे टेलीफोन नहीं रहल ना तो लेता मिला था अभी जितना कोई के देखबा सब कोई टेलीफोन में घुस गल बा
0: जी
1: जो काम रहल 9 to 5 काम करके घरे आवत लन जा काम के भुला जाते लन जा अब कुछ नहीं बा, अभी तो सब कोई वर्क फ्रॉम होम करेला, सब कोई काम करेला, तो कुछ कर रहे सा, और लोग अपन काम पूरा करे खातिर ओकर बाद में भी अपन

0: लैपटॉप के संगे बैठा रहे लंच
1: जी जी।
0: और आजकल की देखा तो जैसे हम
1: इतना सुविधा हो गल बात है, आजकल
0: सुविधा हो गलवाना कहीं ना कहीं परिवार तो छुट्टा था ना
1: जी,
0: हमने परिवार कौन चीज बोली लाजा। अभी परिवार तुहरा कब मिलेगा, रानी वैसे में मिली शादी में मिली
1: हाँ।
0: अभी एगो शादी में गई ला तो 2-3 बरिस के बाद तुहर परिवार से मुलाकात हो गई
1: हाँ।
0: ना
1: सच्चे
0: अभी या तो फिर एगो मरनी हो जाला या एगो शादी रहला तबे भेटाला इंसान, बाकी कोई के समय नहीं बा। बोले लंजा जिमोस के दिन चाहेला रिलैक्स करके
1: फोन के कॉल करके लेता नहीं बाते, आज तक इतना एसएमएस बाते, सोशल मीडिया बाते, पर हाउ जुन जुन जुन जुन जुन अपना परमा बा ना, हाउ जुन जैसे हमने बोला था ऐसा वो कब दी होकर बाते।
0: तो सोशल मीडिया बा तो व्हाट्सएप पर एगो परिवार के एगो ग्रुप बना दे ना, एगो नमस्ते, एगो परिवार में कुछ हो, हमने के परिवार में जहाँ कुछ हो गया हमने के पता चल जाला, काहे कि हमने के परिवार के एगो व्हाट्सएप ग्रुप बा, कोई बीमार हो गल, कोई कहूँ पहुंची होता, कोई के कुछ हो
1: सबको के पता चल जाला
0: हाँ, कुछ नहीं रहना तो कुछ ना कुछ तो होते रहला। फिर भी यानी कि आज आप लोग इतना ही टेलीफोन के संगे रहला, सत एगो एगो नमस्ते, एगो परिवार के हाल चाल ये सब चाहला पूछते रहे के ना, ऐसा बात
1: सही इस्तेमाल चाहला करे के,
0: सही इस्तेमाल तो सब कोई नहीं जाने ला करे ना।
1: तो
0: आजकल कुछ करे लंजा, सब कोई बिजी बा, वीडियो बनावे लंजा, अपन वीडियो बना के पोस्ट करे लंजा, कितना लाइक्स मिली। अरे भाई वो उद्यमिया तो तुके जाने ला नहीं, तोहरा हाउ एगो इंसान से लाइक के एक्सपेक्ट करत हुआ जो तोहरा जाने ला नहीं, खाली तोहरा वीडियो में देखेला, लेकिन जो तोहर परिवार में जो इंसान लोग हम जा उनका भुला गई ला
1: जी
0: ना, जब काल बीमार हुई ला, काल कुछ हो तोहरा तो तोहरा हाउ निकल के आए थोड़ी ना, वीडियो में से निकल के आए तोरा देखे के आए तोरा देखे
1: परिवार
0: में आए मलाद रबर पिताल में रबर क्या आवेला तोरा देखे तो परिवार लोग आवेला, भले परिवार वा तोर से 1-2 बरिस नहीं मिलेला, लेकिन जब सुनी कि फलनवा मलाद हो गल बा, फलनवा के पे आशो हो गल बा, तो तुरंत निकल के आवेलन जा, आवेलन जा के नहीं
1: जी
0: आवेलन जा देखे। तो यही तो हमने बतिया थे जाके हमने के आज के जो परिवार बा वो परिवार वा कहीं ना कहीं खो गल बा
1: जी।
0: हमने के लड़का लोग नहीं जाने ला दादा दादी के प्यार, आजकल तो दादा दादी भी कहाँ दूर जा पाओ, तो दादा दादी ले टेलीफोन में रहला दादी के बोलबा, तो दादी के बोलबा लैकवा के देखे हम तनिक आयला, दादी लैकवा बगल में बा, दादी वीडियो देखता
1: हाँ।
0: दादी वीडियो देखता, दादी फिल्म देखता, तब अयला पूछला दादी के लैक हाँ, तो दादी के देख लेला। यानी कि आजकल के जब बोली ला जा लैका देखे के, तो वो खाली लैका के बगल में बिठा के वो टेलीफोन देखला हवे हाँ, पहले ये सब नहीं हुआ था।
1: आगे तो हमने के दादा दादी लोग नाना नानी लोग कितना किस्सा सब सुनावत रहलन जा, आज है याद बा हमने अपन लड़का के सुनाए ला जा, कबो कबो हमने भूल जाएला सा, पर हो दिमाग में बाकी हाँ आगे हमने के दादा दादी ललन सा हमने के सपोर्ट सिस्टम जैसे बोली ला जा, जब परिवार के बात हमने करत है जा, हम जो सपोर्ट सिस्टम वा वो बहुत ही जरूरी रहल, और आज दुर्भाग्यवश जैसे कि हमने बोला था जा इतना आगे बढ़त है जा, पर पीछे पीछे पाछे पाछे हमने जात है सर।
0: अच्छा एगो बात थोड़ा पूछब, लिट्टी के नाम सुन ले वा
1: के कर
0: लिट्टी
1: लिट्टी हाँ
0: कौन छा
1: जो हमने खाए ला सा
0: हाँ एगो
1: चा संगे हाँ। अभी भूख लगल बा
0: तोरा मिले ला लिट्टी खाए के
1: कबू कबू हम बना दी ला
0: बनावे ला ना
1: हाँ, माँ बनावे ला
0: कहाँ से सिखला
1: दादा दादी से माँ से
0: सिखला ना
1: हाँ।
0: अब हम आज के जो लड़का लोग हम जा वो लोग से पूछ बा लिट्टी को छे तो लोग जनियन जा
1: कुछ नहीं जाने लन सर
0: कुछ नहीं जानी अंसा
1: जी।
0: अभी देखबा हमने अभी बात करे जा परिवार के, हमने के परिवार में हमने के जब दादा दादी रहे, हमने के चाचा चाची रहे, हमने के सबको एक परिवार रहे, आपस में बैठ के दादा आगे आगे इतना दवाई कहाँ रहा था, आगे कुछ इस्तेमाल करते लंचा घास फूस जुनबा ओकरे से
1: घरेलू नुस्खा हमने जो
0: घरेलू नुस्खा, आजकल घरेलू नुस्खा इतना ट्रेंड हुआ था, टिकटॉक देख ला, फेसबुक देख ला, सब कोई वीडियो बना बना के डाला था, बना बना के डाला था हाँ, ये चीज़वा कि आगे हमने कुछ कर अयो हाई हाई के पीही हाँ। हम तो डॉक्टर लाके जाता है, महंगा महंगा के दवाई किनबा, डॉक्टर लाके जाइबा, दवाई पीबा तब अच्छा होबा, जबकि हवे जो हमने के नुस्खा बा हमने के दादा दादी कब से बोला था सीखा सीखा, काढ़ा पिया, हरदी दूध पिया, और कितना कुछ बा हमने के ढेर कुछ बा ढेर अग्याखर
1: अग्याखर
0: कोई जाने लग गया खर के अभी अब तो इतना ट्रेंडिंग हो गल बा,
1: अब तो रिसर्च हुआ था तब जाना था वंसा कि आ ये सब तो रहल आगे अब वापस चला इलन सा,
0: हमने के जो बड़ा बुजुर्ग रहल वो लोग के दिमाग तेज रहल ना, वो लोग जानत हो
1: जानत रहल सा,
0: तो हवे तो थोड़ा बोलत है कि आगे हमने के दादा दादी के संगे बैठबा, माता पिता के संगे बैठबा तब ना सीखबा, तो कोई तो बैठे त नहीं जाय द लड़का छोटा लड़का के नाती पोता के तो भुला जा, माँ के संगे बेटा बेटी भी नहीं बैठेला
1: जी
0: ना, तो चाहेला उलोग के ई सिखाई के उलोग के चाहेला जनाई के कि हमनी के जो माता पिता बा

0: जब हमने के कुछ सिखावत हो अंजा तो कहीं ना कहीं एगो एगो एगो चीज हमने के सिखावत जैसे आगे चल के हमने के काम आए
1: तो हाइजा पर एगो बात आवेला विदिता जब बोलो तो चाहेला सिखाए के हाउ जोन माइंडसेट वाबा वो बदल गल बा पर चाहेला फिर सो कैसे हमने कैसे सकब सा हमने माँ है सा हमने के लड़का वो सब बातें हमने एक समाज में रही ला सा परिवार में हमने जियत है सा तो हमने जानी ला जा हमने सोची ला सा ऐसे जैसे तू सोचत हुआ ढेर जना सोचत हवन और हमने मांग करब जा कि जितना जना हमने के सुनत हवन देखत हवन जे अपन न जो एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करे के मन बात तो हमने के लाइन खुलर बातें का सौंदर्य का तो वैसे तो कौन चीज चाहेला करे के तुहर देखे में जो वापस हो दौड़वा वो फिरों से चलाए
0: देखा
1: एक हल्ला
0: एक खाना नहीं हुई कैसे थोड़ा बोलब कि जब एगो आदत लग जाना ना ओके छोड़े के बड़ा मुश्किल है लेकिन एक मतलब ई नहीं बा कि नहीं सकब सा वो आदत वा छोड़े
1: जी
0: हम एगो एग्जाम नीतूषा के लिए नीतूषा कुछ कर तलन जब चा पिया तलन तो बिना चीनी के चा पिया तलन ये हमारे संगे हो बा नीतूषा हमेशा बिना चीनी के चा पियन फिर उकर बाद में हम बोलते नहीं कि चाह चाह चाहला चाह कहते पिए के जब ले उकर में दूध चीनी नहीं डलबा उकर में स्वाद कैसे आए चाह के तब बोले आगे तब पिए थे नहीं अभी छोड़ देनी चीनी पियल हमने बिना चीनी के चाह कैसे लगी नहीं सकब पिए ठीक बा फिर बाद में कुंची होल वो दूध छोड़ दिलन हम बोली था टीबगवा मुँह में डाल के गर्म पानी पियल कर कौन काम के चाह पिए थे लेकिन जब बाद में देखनी जा तो है जो जीते पिया बा आगे के हमने के जो बुजुर्ग रहल ओ लोग जीते पिया पिया तलन जा तो धीरे धीरे करके सीखे के हमने के मौका मिले ना तो काहे जीते पिया पिया तलन जा तो एकरो पीछे को रीजन बा कि काहे पिया तलन जा फिर बाद में पता चलल कि जो चीनी बा एकर से जो कैंसर बा एकर बढ़ जाला डायबिटीज हो जाला सब तो हमने के जो बुजुर्ग लोग हमन जा जब वो लोग जीते पियर पिया तलन जा तो हमने बोल सा हाँ सकेला गरीब रलन सा दूध दे रहा पिया सा वो लोग जानत हुन सा लोग कुछ करत हुन जा बस हमने के बुद्धि नहीं रहना जा के पुछप जा
1: उतना सुविधा नहीं रहल आगे यहाँ वेदिता हाँ। उतना सुविधा नहीं रहल पर तबो वो लोग निमन से अपन जीवन ले जाते रहलन जा
0: अभी के नौजवान लोग के देखा
1: सब कुछ मिला जैसे बोलिए ऐसा प्लाटो भी मिला था सब कुछ
0: पर तो जिम जाके पेट इतना निकल गल बा खा पी के खाली जिम जात हुआ सा लेकिन हमने के दादा दादी दादा लोग हमने के चाचा लोग बिसिकलेट चढ़त हल अब हवे बिसिकलेट पर जाके वो लोग जिम में चलावत हुआ सा
1: जी
0: एक्सरसाइज करत हुआ सा पे करके करत हुआ सा जबकि सेकंड से को बिसिकलेट कीन के आस पास में घूमल करे संगतिया संगे कहूँ लेतू करे बाहर के जो किसी वजह ठंडा हवा बा ओकर फ्रेश ऑक्सीजन मिली चलते चलते कमाहत लोग संगे बतिया लियन सा और कहूँ जाके कोई के परिवार के हाल चाल पूछ लियन सा ये सब नहीं सकन सा करे कुछ करे सा जिम में जियन सा बॉडी बने सा धीर को होता हाँ हम तो जिम जाएला जिम बहुत एगो ट्रेंडी एगो अवती चलाल बा एगो फैशन चलाल बा तब भाई बिसिकलेट बाई गो बिसिकलेट कीन चलाओ बिसिकलेट हुआ तुहर बॉडी बनी और ऐसा ऐसा करके तोरा बोलब कि हमने के हमर दादा हम जानत हमर दादा जब ओकर मृत्यु हो रहा हमर दादा एकदम फिट रहलन हमर दादा एकदम हट्टा कट्टा नहीं बोलब लेकिन एकदम फिट रहल कोई के तौन नहीं निकल रहा कोई के कैसे बोल जाए एक्सेस पुआ नहीं रहा सब कोई बिसिकलेट चलावत हल और बूढ़ा ले हमार दादा अपन बिसिकलेट चलावत हल तो लड़का लोग के चाहना अभी सिखाए के लड़का लोग फुटबॉल खेलता कहाँ खेलता टेलीविजन में खेलत हुन सा
1: हाँ
0: गेम खेलत हुन सा लड़का लोग सब गेम खेलेला लेकिन कहाँ खेलत हुन सा टेलीविजन में खेलत हुन सा तो ऐसा लड़कवन के वो लोग के शरीर का होता वो लोग के और बोलत हुआ डायबिटीज हो गल बा बोलत हुआ लड़का के प्रॉब्लम सौते हो गल बा कैसे हुआ था लाइकवन के तनिक को निकाला हो सब कोई बोला समय नहीं मिलेला समय नहीं मिला हमने भी बोलेला जा लेता नहीं मिलल समय नहीं मिलल
1: चाहे खोजे के
0: लेकिन समय चाहे ला निकाले के सब कोई के तब इनका कहता मिलेला ना फजर के बुढ़िया उठ गईला हमार एगो आदत रहल कि हम जिम जाते नहीं हमारे तो प्रोग्राम रहल हम तो करते नहीं लेकिन जब जिम छूट गल तो कर बाद में बुझाए किससे आतान करते आज जाप काल जाप आज जाप काल जाप फिर धीरे धीरे कुंजुल वजन बढ़े लगल तब घर से जाना शुरू करे के तो जब सब कोई संगे रहला हमने कुछ कहला जब काम में हमने परिवार के बात बतिया थे जा हमने काम में एक्सरसाइज करेला जा याद बा ना हमने अपन काम में भी जब हमने के समय मिलेला तो हमने समय में तनिक स्ट्रेचिंग करेला जा
1: हाँ।
0: आपस में बतिया ला जा
1: फजीरे बजे स्टूडियो में हमने करेला विकास संगे
0: विकास संगे नीलमणि संगे हमने सब कोई फजीर फजीर
1: स्टूडियो कुछ ना कुछ हो चाहेला करे के
0: चाहेला करे के तो एक एक कुछ बोल जला एक एक पौताज बोलल जला जो आप करत हुआ दूसर के सिखावत हुआ तो अपना मान के सिखावत हुआ ना और अदमिया जो करा था तुहरा संगे वो तोहरा अपना मान के तोहर पर कॉन्फियंस करके करा था तो एक एको परिवार बोलल जला जो आप सीखत हुआ सिखावत हुआ और सब कोई के अपन संगे

0: कारण बा, कारण कौन जी ला सौते के
1: जी।
0: ला सौते के वजह से हमने के तबियत ठीक रही, सबको के तबियत ठीक रही, तो हमने तनी कौन एगो डिपेंड देवा थे जाना, सबको हला कर करके ए ए ऐसा कर, ए ए तो ऐसा कर,
1: एगो मोचवासू हो जाला
0: होला।
1: ये तो परिवार है,
0: हाँ ये परिवार है। तो हमें बोली राजा, जब हमने परिवार के बात बतिया राजा, तो सिर्फ खून के रिश्ता नहीं है, ये हमने के उस संस्कार भी है जो हमने अपन के संगे बांटी लाजा
1: जी।
0: जहाँ जाए लाजा बाहर हुआ सबको संगे बांटी लाजा, सबको के अपन संगे लेके चली लाजा
1: जी
0: ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हमने बात करे थे जी आज के छोकरा छोकरी लोग आगे शादी हुआ था, छोकरा छोकरी लोग कहाँ रहता सास ससुर के संगे एक घर में, एको घर में सास ससुर दादा दादी सब कोई रहा था पूरा परिवार। अभी तो जब ले छोकरा घर ने बनाए छोकरी शादी नहीं करेला।
1: हाँ वो तो बोली हम
0: लिबियते चाहेला, लेकिन वो लोग उकर लावांतास दे जावांतास नहीं जानत हुआ जाना। लिबियते कौन चीके बा, अच्छा शादी करके अला काम करत हुआ। आजकल की तो हमने के जो माँ बाप लोग बा लोग तनिक मोडियान हो गल हुआ जा, आजकल तो सास ससुर भी काम करत हुआ जा, बहुत लेता लेके लोग अपन रिटायरमेंट ले जा, दादा दादी घर में बा काम करके अला ना, संगे संगे पकावत हुआ, संगे संगे खात हुआ,
1: हाँ जो मजा हुआ बा,
0: संगे संगे किचन साफ करत हुआ ना।
1: हाँ
0: या तो फिर कबो बीमार पड़ गए तो तुहर जो परिवार बा वो तोहरा दिखा था, तो चाहे ला जरूरी है। तो हम के संगे भी कोई बा बात करे खोया तुहन
1: तो चला लाइन खुलल बात 402-85-85 पर। हेलो
0: हेलो
2: हेलो नमस्कार,
1: नमस्ते जी,
2: नमस्कार
1: जी,
0: वेदिता नमस्ते जी
1: जी, बोला बोला जी बोला।
2: देखिए आज जोन विषय पर बोला था जा बहुत महान विषय है,
0: बहुत धन्यवाद।
2: माता पिता परिवार, देखा पहले के जोन मान सम्मान रहल एगो घर में एगो परिवार में, घर छोटा रहल लेकिन प्रेम बहुत रहल, मान सम्मान माता पिता के चरण छुए के ई सब
1: जी।
2: अब नहीं बा ई सब। देखा एगो एगो बात पर बोलब, महादेव भगवान शिव कार्तिकेय उनकर सामने खड़ा हो गल, जैसे बोला जा कि जो माता पिता से की करे तो वो कोई नहीं करी
1: जी।
2: कार्तिकेय खड़ा हो गयलन अपन पिता से लड़ाई करी, लेकिन शिव भगवान वो झुक गयलन, झुक गयलन, मान गयलन अपन अपन बेटा के सामने लड़ाई लड़ाई करे के नहीं नहीं चाहलन है। तो ये एगो माता पिता से की करे है, एगो महान उदाहरण है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी, बहुत धन्यवाद आपके विचार खातिर।
2: आज के बच्चे अपने माता पिता को पुलिस में डाल, मुफ्त में तोला पुलिस
0: नहीं, सच्चे बोला सच्चे बोला,
2: हाथ उठाई सकी न जोर से ओकर से बात करे सकी ओके। और पहले के जैसे विजिता जी बोलन कि मार भी खैले होन छुकनी के, पहले के लड़का लोग हम ही खैले हैं छुकनी से मार। जोन जोन जोन डिसिप्लिन रहल आगे के समय में माता पिता के मान करे के उनका बात सुने के, तब आज हमने के ऐसे हैं सर।
1: धनी जी तुहर से हम पूछते, तुहर घरे लड़का बा
2: जी? हाँ बा, हम दुगो नाती बा,
1: दुगो नाती। और उ लोग दुगो दादा हुआ कैसे रहेलन तुहर संगे?
2: नहीं बहुत उ लोग बहुत निमन बा, एगो ऑस्ट्रेलिया चल गल, ऑस्ट्रेलिया चल गल बा पढ़े, और एगो बाहिजा बहुत अच्छा हुआ
1: जी जी।
2: हाँ हम आज के समय में ऐसा लड़का नहीं लौकेला, बुनावी नहीं लौके थोड़ा, हाँ अच्छा हुआ सर, अच्छा
1: अच्छा जी,
2: धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
1: मेरी तो है ये तो संस्कार
0: सुनना, कुछ बोलन बोलन लड़का लोग बोला तो केला पुलिस डाल दे। हाँ
1: आज के जमाना, हाँ आज के नया जमाना
0: है, हाँ एगो नया जमाना हो गल बा, जहाँ पर लड़का लोग अपन माँ की धमकी देवेला, जायदाद पे लड़ाई होवेला।
1: आगे हमने के कितना मार पड़ल,
0: हम कबो मार नहीं खेले सच्चे हम कबो मार नहीं खेले हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम के कबो ना हमार माता ना हमार पिताजी हम के कबो मरले हवन। और लेकिन पिताजी के एगो नजर रहा ऐसे खेल में भाई बहन संगे कुछ बोल दिला,
1: हाँ
0: कैसे बात बात में कुछ एगो एगो नाम ले ले बा, जैसे कोई जानवर के नाम ले ले बा, कोई के एक बोल दे बा।

0: बल दिला बांदर हाउ बाप कहा जय बाप हाउ जब पिताजी खाली बोल कौन ची बोल और जब ऐसे करके दिखलन हाउ थर थर थर थर कांपे लगबा हाउ रोवा बुझाए 10-15 को छुकनी लग गल बातोरा अब तक ना खाना पीना अब तो कुछ नहीं अब तक कोना में बैठल रहा अब तो कुछ नहीं
1: सकबा लाइक वन के डांटे कुछ हो बोले
0: ला पुलिस डाल दे
1: अबे तो
0: कहे तो बताए ते कहता ला पुलिस जाए कोई बात श्रोता जन मसिंह बात करे खो जाता नहीं अभी ना दे
1: अभी ना? कोई नहीं हुआ अच्छा
0: तो ई सब चीज हुआ था हल ई सब कुछ हुआ था हल और हमने परिवार के बारे में बताया थे जा तो परिवार के संगे समय
1: जी
0: निकाले
1: के बहुत जरूरी है हमने अभी बात कर रहे थे कि समय चाहेला निकाले के कहीं की हमने आसान बा बोले के लेता नहीं बा हमके समय नहीं बात ये करे के तो हमने तो सुत था ऐसा खा था ऐसा ओकर लेता तो मिला था ना
0: तो थे कोई बोले ला ना हमके तो खाए के लेता नहीं मिलेला
1: अबू तो
0: अच्छा एगो एगो एगो एगो साधारण एगो एगो आजकल के हमने के एगो बहुत बड़ा बीमारी हो गल बा स्ट्रेस
1: जी
0: जाना था ना
1: इतना सबसे बड़का बीमारी है
0: सबसे बड़का बीमारी लेकिन स्ट्रेस कुछ नहीं है एक बोल जला ओवर थिंकिंग हद से ज्यादा सोच जो नहीं होलबा ओकर बारे में सोचबा
1: अब एकर चलते कौन ची नहीं होला बोला
0: एकर चलते ढेर कुछ होवेला हमने के जोन घर पे जोन हमने के माँ बहन लोग हमन जा ओ लोग के बुझाला कैसे घर के काम करे के ओ लोग के जिम्मेदारी है ओ लोग के लगेला कि आज हमने ऑफिस में काम नहीं कर रहे थे जा दूसरा नौकरी नहीं कर रहे थे जा तो दुनिया के जितना भी बोझ बा उचाला हमने के कंधा में रह के ना ओके चाहेला सब कुछ करे के तोहरा बोलक ओके चाहना सब कुछ करे के वो इंसान नहीं हा आप जब काम करेला जब आप काम करेला एगो ऑफिस में तो छुट्टी नहीं लेवेला बोलबा आज हम एगो छुट्टी लेवा बीमार रहेला तो छुट्टी नहीं लेवेला सिक लीव तो लेवेला ना और जब तोहरा कहूँ जाए के रहिया तोहरा मन नहीं करेला एगो कौजे ले लेबा घरे कौजे लेके घरे कुछ करेला
1: लुभास भी करब सर
0: एगो महिला रहेला तो वो लुभास करेला एगो पति कुछ करेला वो
1: ओहो अपन काम करेला
0: काम कर
1: कबो कबो काम करेला
0: कम हा लेकिन बहुत कम हा ज्यादातर बोले लंजा आज हमने देर से उठब जा उठियन जाए तो अच्छा नाश्ता चाहेला नाश्ता कर ले तो अच्छा लंच चाहेला लंच हो गल तो तनिक उन गाते हुए पका दा फिर सांझ के कहे पति घर पे बा वो खुशी खुशी करता और एगो चीज देखिए एगो परिवार में माता पिता दोनों लड़का जब बीमार रहेला तो ओके देखे के वो पत्नी हुए देखेला
1: वही देखी हाँ
0: पत्नी हुए सब कोई के देखेला उहु भी मार बा ना लेकिन
1: रिस्पांसिबिलिटी देवा जन बाते उ अपन कंधा
0: उ बोलेला ओकर कंधा काहे काहे कि उ काम नहीं करेला देखो बहुत एगो एगो मूवे चीज है जो महिला लोग अपन दिमाग में रख ले वन जा कि जब बाहर ऑफिस में काम नहीं करेला एकर मतलब यह कि तोर वालिया नहीं बा
1: हम तो बोलती जितना लापे हमने के जितना जना काम करेलन ऑफिस में हाउ से जस्ती ओकर से जस्ती लापे एगो महिला जन हाउ साफ हमने बोलीला जब ओकरा चाहेला
0: देखे कि उ काहे उ वनका तो वनका चलते रहला उ सोच रही काल कुंजी पका आप कान कुछ कर पानी बरसता लुगा छाना रमासे के लुगा छाना पासे करे के
1: ओकर दिमाग चलते रहेला
0: वो ओकर दिमाग चलते रहेला और दाद देव हम ऐसा दिमाग के जो इतना बरिस से अपन घर के संभालेला
1: जी
0: आजकल के कौन ची करे लंजा आजकल के तो देखा तो आप परिवार में पैसा खातिर जीवोस हो जाला
1: पैसा खातिर
0: शादी करला जब कोई शादी करेला पैसा
1: शादी का काहे होला हमने शादी की बात कर रहे थे सर हमने काउंसलर्स तो नहीं है सर
0: शादी
1: पर हमने वो शादी कर ली सर तो हमने काहे शादी करी ला सर
0: परिवार आगे बढ़ाए के काहे की कोई के पसंद कर ला जीवन
1: आगे तो बोलो जात रहा देखो छोकरी अब शादी कर रहा था तो चाहेला हो जो परिवार के वंश के आगे बढ़ाए के चाहेला ना
0: बढ़ाए के तब शादी हुआ था अभी शादी हुआ था शादी होवेला हमने के जैसे जाइला जा सब कोई कि एगो छुकड़ा छुकरी आजकल लव मैरिज करेला ज्यादातर आजकल एगो 20 बरिस पीछे जेबा त सब कोई लव मैरिज करे के एगो ट्रेंड हो गल बा सब कोई लव मैरिज करेला आजकल कोई नहीं बोलेला हमर खातिर एगो छुकरा देखे हमर छुकरी देख सब कोई अपन पसंद से शादी करेला अपन पसंद से शादी करेलन जा फिर ओकर बाद में महंगा महंगा की लुगा किनेलन जा फिर ओकर बाद में देखो आशों देखेलन जा एक्स्ट्रा हो जिने खाए की कुछ पकी कौन एंटरटेनमेंट हो आजकल एगो शादी 5 लाख से ज्यादा पैसा निकल जाला ओकर में हम कमती बोलनी कमती
1: ओकर से जस्ती हुए
0: ओकर ले जस्ती जाला हम कमती बोलनी ओकर ले जस्ती लोन ले वेलन से शादी करेंगे फिर कुछ होला
1: शादी टूट जाला
0: दुबर इसके बाद शादी नहीं चला था काहे नहीं चला था छोकरा छोकरी दोनों जना तो संगे बन जा
1: बोल बोलियन सा को पाचिप नहीं है सब
0: बस की हमने के जोन घर में जोन छोकरा बा ओके सिखावल गल बा कि तू छोकरा होवे तो के जाना काम नहीं करे के तो वो खाई के पकाई के धोवे के मंजे के कुछ नहीं जाने ला ना कुछ नहीं जाने ला वो तब शादी करके आयल मदम बोलियो के हम घर भारत है तनिक उन मोप पास कर दी इत हमारे से काम करा होता बता हम खाई के बना तो बर्तनवान धो दे हमारे से काम करा होता

0: भाईजा परी चाहेला बोले कि सब जुन छोकरा ऐसा नहीं हवन सा ढेर जाना हवन सा अभी जो
1: एग्जाम्पल
0: एग्जाम्पल ढेर जाना वो बातें जहाँ हमने देख ली सा वो लोग शादी करत हवन सा हाँ दोनों हाथ मिलकर बटावत हवन सा कोनो खाए बनावता कोनो झाड़ू बहारा छोकरा लोग बर्तन मांजत हवन सा
1: शादी चलेला
0: हाँ
1: कहे कि जब शादी करबा तो चला लोग किस काउंसलिंग नहीं बा आजकल तो लोग चला सिखाए के कि जब शादी करत हो तो तुम्हारा चाहला जाने के कि कुछ बेटा जब देखा जब किचन में एगो माँ अपन बेटी के सिखावेला खाए के पकाए के अपन बेटा के नहीं बोलेला बेटा कुछ कहला फुटबॉल देखा था वो जब सिखेबा जब माता पिता ही अपन बच्चे में फर्क करे लगेला तबे सोचला कि आगे चल के परिवार में
0: शुरू हो जाला हवे से
1: ही ऐसे परिवार में सब प्रॉब्लम शुरू हो जाला जब शुरू से अपन लड़का में कैसे दूर नजर नहीं करबा जितना अपन बेटी के सिखावत हुआ उतना अपन बेटा के सिखेबा आजकल के माँ बाप लोग कहीं ना कहीं सकब बोले कि जब अगर लड़का लोग परदेश जात हवन से पढ़ाई करे तो खाए के पकाए के नहीं चाहला वैसा लड़का लोग जब सीख के आवन बाहर से तो एक हद बोले लंजा ये लोग तो ओपन माइंडेड है ये लोग तो मुदियन बा ओपन माइंडेड बा निमन लयका बा बस कि वो जाके पकड़ ले बा वो जाना था कौन जी
0: हाँ
1: तो करता हॉस्टल में बा खाई के पकावता सिपा कहूँ पर रहता तो अपन जिम्मेदारी ले लेलक
0: हाँ
1: कल शादी कर लग ओके बोल पे बर्तन मंजे के तो
0: तब जनक जो लाविवा बाते वो सच्चा कैसे बाते
1: तो ओके ओके पता बा कि बर्तन मंजला में कोई खराबी नहीं बा हम तो कर ले हैं ना तो जब माता पिता अपन लड़का लोग के है ये चीज़ सिखा दिया जा तभी जाके उकर परिवार के जो नींव है ना वो स्ट्रांग होवेला मजबूत होवेला
0: तो जब मजबूत के बात हमने करे थे ऐसा तो एगो मजबूत परिवार एगो मजबूत समाज हमने कैसे सकब से बनाए
1: देखा अभी घर में जब ले अपन परिवार के जो सदस्य बा ओके नहीं सकब सुधारे
0: हमने के नींवा हवे जो बात हवे
1: तो समाज के नहीं सकबा सुधारे हर कोई आज अपन हर कोई आज अपन अंगना साफ करे साफ कर दिया जा तब हमने के जो देश बा कहूँ कूड़ा कचरा नहीं मिली ना अपन कूड़ा कचरा
0: आज फेंकब से का होई
1: अब अपन कूड़ा कचरा आंगन में फेंकब ना या तो फिर वाजन आगे फेंकब तो सब कोई आपस में फेंका फेंकी करी तो कहाँ सफाई रही
0: तो उसने रही
1: सफाई कहे चाहना करे कि सफाई तो हर घर से जाना शुरू करे कि तोहर सीख जोन बा तोहर जोन कैसे बोला तोहरा चाहला घर से ही सीखे के घर से चाहला लड़का लोग के सिखाएगी घर से लड़का लोग के सिखेबा तब न जाके लड़का जब बाहर जाए तो हर एगो माता पिता अपन लड़का के सिखाए तो बाहर जाके लड़कों तो हवे लोग के व्यवहार रही ना
0: जी व्यवहार उसने आचार उसने हमने के समाज बनी
1: तो उसने बनेला जैसन बात करबा जैसे हमने कैसे आई ला जा हमने कौन चीज करी ला जा सुबह जब मिली ला जा पहला काम
0: गली लगी ला सर
1: गली लगी ला जा काहे गली लगी ला जा
0: और जो काहे
1: हमने हाथ नहीं शिकन नहीं करी ला जा काहे हमने नमस्ते नहीं बोली ला जा काहे हमने हाय नहीं बोली ला जा हमने में वो अपनापन बा हमने आई ला जा तो पहला गली लगी ला जा हमने प्रेम बाटी ला जा
0: जी
1: और हर जन प्रेमवा बा ये हमने के काम में कितना कितना हमने के सहारा देवेला
0: जी हमने के मॉर्निंग वाइब जैसे बोली ना बूस्ट अप बोली ला जा ना ये हवे से शुरू
1: होला हमने के तो सुबह के जब प्रोग्राम होवेला ता कुछ रहेला तो सब कोई स्टूडियो में चलावेला
0: हाँ
1: धमार होई लगेला काहे एक तरह के प्रेम है
0: जो आपस
1: में बा हियाँ पर ना कोई की जालू करे के बा हियाँ पर ना कोई की बोले अच्छा अच्छा तो जोली लुगा पहन के बा जब कोई जोली पहन जाता कुछ कहला जा ऐसे कहला जा
0: तारीफ करी ला
1: नजर उतारी पहला नजर उतारी ला जा जहाँ कोई के देखी ला जा जोली लुगा पहन के बाद नजर उतार सा काहे करी ला जा काहे कि परिवार मानी ला जा और जैसे बोली ला कि हमने जो हमने के माता पिता हमने के सिखैले बा हवे हमने के संस्कार बा और जब तू अपन संस्कार के संगे ओके काम में जब हमने कैसे लागू करेला जा सब कोई अपन अपन करेला तब तब भी देख बा कि यहाँ पर हमने के काम काम न रह कर कैसे बन जाए को मस्ती हो जाला
0: हो जाला चाहेला हो के
1: चाहेला रहे के
0: क्या कि तोशो जैसे हमने बोला था ऐसा स्ट्रेस सगरो बाती तो हम स्ट्रेस बा के कम करे खातिर उकरा हमने भुलाई लिया जा हाँ जब परिवार मिलेला तो हर से हमने गले लगी ला जा विकास आवेलन हाय हमने करी ला नमस्ते विकास कैसे ये सब सब कोई से हमने मिली ला जा नमस्ते एगो सूर्य हुए वो बहुत चीज बोल देवेला
1: कोई बीमार होवेला तो सब कोई भागे लगेला कोई बीमार हुएला तो यहाँ पर सब कोई भागे लगेला परिवार के कोई फोन नहीं लेता नहीं मिला टेलीफोन नहीं करेगी कोई के कहाँ कुछ हो हमारे कपार दुखा था अच्छा कपार दुखा था आता दवाई लेके आईला
0: सुनमिस देला सर
1: हाँ दवा दिला तनिक कहाँ दुखा था हैजा दुखा था तो ये सब चीज़वा काहे हुएला काहे कि हमने परिवार मानी ला जा

0: तो जो कैसे बोल रहे काम हमने के आज आप लोग भी यही विचार के संगे चल बा देखा आप एगो एग्जाम दिला आप एगो आनिमात्री सव हम एगो आनिमात्री साई हम तो कौन चीज से कब तुम संगे चोरी करे तुम्हार तो तालों से कब चोरी करे
1: ना.
0: आप बहुत अच्छा गीत गावेला हमसे कब चोरी करे नहीं से कब चोरी ना. करे ना हमके मन बा गीत गई के ना
1: हम कस... तो तोरा सिखाब
0: तो हवे ता परिवार मान के हमके सिखाई बा हमके नितुषा मरले भी बा
1: बोल
0: कान खींच ले बा हमके ऐसे कसके ने मरले बा लेकिन ऐसे करके मरले रहल मर कान खींच ले रहल कहे कि सिखावत हलम सीखत नहीं रहली तो सब कोई सब कुछ नहीं सकेला करे जैसे कि हम ओके नाचे के सिखावत हली लेकिन वो नहीं सिखा बोले हम नहीं सिखब तो सब कोई के अपन अपन एगो तालो है
1: जी
0: सब कोई के अपन अपन एगो कैसे बोला जला एगो एगो एगो मानिए एगो आदत रहे ना जैसा आप हो हमने से कब बने जैसा हम है आपने से कब बने
1: हमने एक दूसरे के एक्सेप्ट करीला
0: सर एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे के एक्सेप्ट करला एकरे बोला जा परिवार
1: जी
0: चाहे तोहर में कुछो अवती रही कोनो एगो एगो ऐसन ऐसन चीज बा तोहर जो हम नहीं अच्छा बा जैसे कि मुंह पर बोल देवेला डांट देवेला डांट के मुंह पर बोल देवेला कहीं ना कहीं वो तोहरा काम आवेला
1: जी
0: ना
1: जी
0: तो चाहे ला हमने कि एक्सेप्ट हो कि एकर तो मानिए हुए इसने बा तो
1: जैसे हम जैसे है हम औसने रहे हम
0: अब देखो
1: जैसे हवा औसने रह बा नहीं सकब तोरा सौंसे करे तू नहीं सकबा हमरा सौंसे करे हाँ, हाँ। कुछ हो बोल बस हमार दिमाग में खन की आ निमन चीज बोला था
0: हाँ जैसे कि बोलनी जा एगो एग्जाम्प दे ले रहनी बहुत एगो सिंपल एग्जाम्प दे ले रहनी हम इतना ने हमके कपार फाची हम नितुषा के बोलनी तू काहे बिना चीनी बिना दूध के तू चाय पिए ले तू
1: ऐसा कर तक समझ गई
0: हाँ हम बोले मुंह में टीबाग डाल अपन गर्म पानी पियल कर बाद में समझ नहीं तो हम नहीं सकब एगो चा बिना चीनी और बिना दूध के पिए तो हम कुछ करनी हम चवे छोड़ देनी हम काफी नवा पिए लगनी बिना चीनी के ना तो कहीं ना कहीं हम भी समझनी कि एकर से हमके लाभ होई लेकिन हम दूध चावा से हमके लाभ नहीं होई चीनी से हमके लाभ नहीं होई तो सीख ली सा ना अपन मान के सिखेला हम सीख ली हम कुछ तोहरा सिखाईला तो तू अपन मान के सीखेला ना तो हाँ ये जो अपनापन है एक दूसरे के लिए एकरे से परिवार बनेला
1: तो हमने के बोला वेदिता एगो परिवार जो बातें जीवन जे नहीं रही परिवार तो जीवन अधूरा रही
0: देखा हम तोरा बोलनी एगो परिवार हमने बोली ला जा एगो परिवार ऊ है जहाँ पर माता पिता भाई बहन सब कुछ रहला
1: घर ला कोई नहीं बाटे
0: कोई नहीं रही तो बनावा परिवार हमने में बा ना परिवार बनाए के हमार कोई नहीं बा हम अकेला हैं हम कौन चीज करब चुपचाप बैठा रहब कोई से बात करब
1: हाँ
0: कोई से दिल के बात करब एगो इंसान जिकर में कैसे बोल जा रहा एगो अट्रैक्शन जैसे बोला जा वो आकर्षित करेला कोई के ना हमने एक दूसरे के कब जाने लगा 15 साल से 16 साल से जाने लगा ओकर ले आगे तो हम तोरा टेलीविजन में खाली गीत गाय के सुन ले हैं लेकिन जब मिली जा तो परिवार बननी जा ना
1: हाँ।
0: हमने के तो खून के रिश्ता नहीं बा फिर भी एक दूसरे के दुख दर्द में रहिला से संगे तो परिवार तो मानी ला तो जब कोई के कोई नहीं बा तो ओके चाहना बैठे के नहीं बनाए के परिवार
1: जी
0: नहीं बात है अपन अपन सब जायदाद ओकर नाम पर कर दा बोला था कि कम से कम एगो परिवार बना दा जब तोहर घर में कुछ हो तब भलाई बा दुख सुख बांट बा साथ में काम कर बा कुछ चीज परेशान करी तो कर से बातचीत कर बा अगर बातचीत करके अपन परेशानी के दूर कर बा
1: एक एग्जाम्पल हमने के जितना लिसनर्स ओ जो जो न, जो न, हमने के सुने होला हवन जा लिसनर्स हवन जा वो लोग हमने से बतिया लन जा अपन दुख सुख सुनावे लन जा कबो कबो रेडियो पर
0: रेडियो के अपन परिवार मानीला
1: हवे था हम ये के पर जे वो लोग नहीं रही अनसे तो हमने कहां रहब सा
0: बिल्कुल हम रेडियो के अपन परिवार हम जितना हमने के जो श्रोता लोग हवन जा ओके हम परिवार मानीला
1: जी
0: ना काहे कि वो लोग के इतना लेता हूँ बाकी 2 घंटा निकाल के तोहर संगे बैठ के वो लोग खाली गीत थोड़ी ना सुनेला
1: जी
0: तोहर संगे बतिया लन जा अपन दुख दर्द बतिया लन जा खुशी में शामिल हो लन
1: जा दो जन शब्द बातें वो काफी है
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और हमने हमेशा बोली ला जा कि हमने के खुशी कहाँ मिली आज सुबह ही हम बोले रहनी कि ढेर कोई सोचेला एगो बड़ा घर मिल जाए ना
1: जी
0: तब हम खुशी हो जाओ
1: जी
0: देखो एगो बड़ा गाड़ी मिल जाए ना तब हम खुश हो जाओ
1: देखा खुशी जब हम एक बात कर रहे थे ऐसा कोनो के खुशी गाड़ी में बा कोनो के खुशी पैसा में बा कोनो के खुशी हमने की संगतिया में बा
0: एगो घर के तो हर इच्छा बा बड़ा घर के किन लेला घरवा में रहे लगला कितना दिन ले खुशी हुई बा
1: जी
0: रोज तोहरा एक्साइटमेंट होई नहीं ना जोन दिन किनला बतैला हो गल एक एक महीना एक बरिस खुशी होइला फिर ओकर बाद में गुंची होई
1: तो खुशी हो जाला

0: चिन्ह हो जाला एगो गाड़ी किनला नवा गाड़ी किनला अल्लाह अल्लाह नवा गाड़ी में घूमत बा सबको के दिखेला एक बरिस हो गल सबको तोहर गाड़ी जान गल सबको अलग अलग गाड़ी किन लेला तोहर खुशी कहाँ गल
1: अब तो सब नॉर्मल हो गल
0: सब नॉर्मल हो गल ना तो हमनी सोची ला जा कि हमनी के खुशी बड़ा गाड़ी बड़ा घर गहना में सोना के गहना किनला इतना बड़ा बड़ा हार किनला
1: कब लेक पहनबा
0: पहन के काम में आई
1: पीछा
0: नहीं ना कब तोहरा खुशी मिली तो एक बार इसमें एक कुछ पहन पा तब तोहरा खुशी मिली
1: हाँ
0: तब बाद में दूसरा कोई नवा नवा किन लेला तब कुछ हो पा तो पुराना हो गल बा एक बार इसमें एक हला पहन ला फिर बोल तब पुराना हो गल बा अब जाना दूसर किने के तब दूसर में पैसा इन्वेस्ट करवा तब तोहरा खुशी मिली खुशी छोटा छोटा चीज में मिलेला हम तोहर संगे बैठ के भी कार्यक्रम करत है हमें खुशी मिला था कहे कि तोहर दूसर दूसर मेहमान है आज हम मेहमान बनकर आए तो हमें तोहर प्रोग्राम के खुशी मिला था ना हमने जो बात करे थे जा आज एकर एगो असर हो हमने के श्रोता लोग पर दर्शक लोग पर
1: हमने की खुशी हुई
0: कोई टेलीफोने करके बोली कि तो लोग के प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा हमके खुशी मिलल
1: जी
0: तो हमने के रोज के ऐसे ऐसे चीज चाहना करे कि हमने के छोटा छोटा खुशी मिली अभी प्रोग्राम खत्म करब जा नीचे जाब जा
1: खाप सा संगे संगे
0: संगे संगे बैठ के खाप सा ना हमने की खुशी मिली अभी सुबह हमार स्टूडियो में विकास चला एगो चीज बोल दिलक हमके खुशी मिलल दीपशिका आके गला मिल गल हमके एगो खुशी मिलल तो ऐसे छोटा छोटा चीज बा कि हमने के खुशी देवेला
1: सच्चे
0: ना अभी हमने बात करे थे जब वहाँ हमने के जो टेक्निक के जो टीम बा लोग हमने के बात सुन सुन के वो लोग हंसत हो जा हाँ। लोग के भी खुशी मिला था हाँ।
1: एक जरिया जो प्रोग्राम माने की एगो जरिया बन जाला
0: बिल्कुल
1: खुश रहे के खुशी पाए के हमने के चाहेला एगो बहाना
0: और जहाँ पर ये छोटा छोटा खुशी रहला ना नितुषा हुआ हुआ हमने के परिवार बनेला
1: आबाद हो जाला
0: हुआ हमने के परिवार बनेला एकरे परिवार बोलल जाला और परिवार दिवस खाली अपन माता पिता संगे नहीं अच्छा हो मातावा जोन बा अभी हनी फित मामा अभी आई के बा हमने बात कर परिवार के अभी फित मामा होता
1: ना अभी सबको यही सब
0: तो माँ कुछ करी खाए के पकाए सब कुछ करी उही पकाए उही धोई उही सब कुछ करी सब कोई कादो लेके आए बन फिर मामो चुमा दे के चल जी अंसा ना फिर मामा हो गल तो ई सब चीज चाहना देखे कि माँ जोन है एगो माँ जोन है दुनिया में अपन लड़का खातिन सकी कुछ भी कर दे
1: जी
0: कुछ भी ओके चाहे आज अपन अपन शरीर के एगो जो जो आखिरी जो बूंद खून
1: निकाले के कतरा
0: निकाले के अपन लड़का खातिर तो निकाल दे ना तो ई सब के एहसास तब होला जब आप माँ बनबा
1: जी
0: जब तोहर गोद में वो लड़का रहला और वो लड़का वो निशेषेर नहीं बाकी वो तोहरे खून है
1: जी
0: दूसर के लड़का भी जे कि अपना मानेला वो भी ओकर खातिर आप सकबत दुनिया से लड़ जाए
1: जी
0: एगो माँ जो है ओकर ममता जब ओकर जाग जाला तब ओके हराए के कुछ नहीं बा हवे माता पिता जोन बा ओकर आदर नहीं करला खाली फितमामा में आके महंगा महंगा कादू दे देला तेकर से परिवार नहीं बनेला
1: एकर से सच्चे के परिवार नहीं बनेला परिवार जोन बाते छोटा छोटा जैसे बोला था वेदिता जोन खुशी बाते जोन मोमेंट्स जोन पल बा हमने जियेला सा वो सबसे बड़का है
0: हम अभी भी अपन नानी के बात बतियाला हम अभी भी अपन दादा के याद करीला दादी के तो कबो नहीं देख लें लेकिन अभी भी अपन दादा के याद करीला दादा कौन चीज बोला था बोल बोल के हंसी ला जा ओकर याद करके हंसी करला के खुशी बोल जा ये परिवार है नीतू
1: जी
0: ना और जब हमने के साथ जब तक हमने के परिवार बा जब ले खुशी खुशी जीवन बितावत हुआ अच्छा बकाल चल जे बात तो तुहरा याद करी अंजा
1: जी
0: नहीं तो कोई पूछे वाला नहीं बा
1: ये सच्ची बात है जब ले हमने जिया था ऐसा कबो कबो हमने अपन जो कमाकात बातें जो संगत क्या बातें परिवार के वो लोग के कदर हमने नहीं जानी जब चल जालन सा तब देर हो गल
0: असली जो जब तुहर खुशी रहला तुहर परिवार लोग रहला कैसे बोली ला जा कि जब एगो इंसान तुहर जीवन से निकल के चल जला तब ओकर अहमियत तुहरा याद आवेला ना तब सोचबा हाँ देखना बुरा कर ली हाँ देखना हम
1: कैसे निशान बन गए
0: हाँ आज हमर संगे रहत आज हम याद आवेलन सही सब बहुत कुछ याद आवेला तो ई खातिन बोल जला ईगो घमंड जोन बा ओके अपन रिश्ता में नहीं आए देबा तो कहीं जहाँ भी जेबा परिवार बना देबा
1: इस सच्चे बात बोल ले चाहे तोहर घर में हो चाहे गो पति पत्नी हवा एगो लड़का हवा कमागाद हवा जोन रिश्ता में हो जो रिश्ता तू निभावत हुआ जब ले ओकर में ईमानदारी नहीं रही अनुशासन रही तो कुछ नहीं
0: ईमानदारी ईमानदारी की बात करत हुआ आजकल पैसा जो बा इंसान के जो ईमान बा ओके हिला के रख दे ले बा आजकल पैसा खातिन जी वो

0: उस हुआ था
1: जी
0: ना, 15, 18, 20, 30, 40 साल के शादी पैसा खातिर टूट जाता।
1: पैसा कौन जी हाथ के मेल है
0: हा? हाँ हाथ के मेल है
1: आज हाँ तकाल नहीं हुई
0: हाँ।
1: पर जो परिवार है जो तुहर सपोर्ट सिस्टम है तुहर माता पिता तुहर लड़का फैका भाई बहन वो लोग सकेला वो लोग से नहीं बचेबा पर जब कोई प्रॉब्लम में रहला तो वो लोग ही आई।
0: छोटा छोटा छोकरी लोग 30-32 साल के छोकरी लोग ना 18-20 साल के शादी तोड़ देवत हो जा
1: जी
0: काहे पैसा बा गाड़ी बा घर बा।
1: आजकल माने की पैसा जो बातें सबसे बड़का हो गई बात
0: तो सोचत नहीं हो जा कि ऊ तो अदमिया शादी शुदा बा उकर घर में एगो पत्नी बा उकर लड़का बा परिवार बा हम कौन ची करत है टूट देवत हो जा शादी टूट गल शादी कर ला फिर कुछ होल खुशी मिलल तो जोन कर्म आप करत हो ना अभी बाद में आवे लाओ
1: हर आक्षो के रियाक्षो बा
0: सब कुछ के रियाक्षो हुआ जेकरा तू अभी खुशी बोलत हवा काल जब कब बोले ना जाना कि आजे आप हमर हमर हमर गोर में कहाँ कौन हमर जूता कहाँ चुबा था जब ले हमर जूतवा नहीं पहन बता नहीं सक बजाने पहन ला हमर जूता चल के से करा चक जनबा कहाँ चुबा था
1: जी
0: तो ई जब ले जूतवा नहीं पहनबा नहीं जनबा तो सब कोई सोचेला कि हई करब जा सबके अपन लावास देखेला सबके अपन लावास देखेला भले दूसर के घर टूटा था दूसर के परिवार में कुछ हुआ था सबके अपन लावास देखेला तो ई खातिर बोली ला जा कि अपन परिवार के अभी से बांध के रख अपन लड़का के संस्कार अभी द बाद में चल के ई परिवार नहीं तो टूट जाए
1: और जे टूट जाए तो तुहर दिल टूट जाए हमने के जिंदगी बर्बाद हो जाए। हम इतना खुशी से तोहरा माने कि हैजा परी आइला और हमने के प्रोग्राम आज बहुत ही खास रहल काहे कि कबो कबो हमने बचाए ला सफर इतना इतना बातें हमने सकेला
0: हमने बतियाए ला जा लेकिन बतियाए से हमने बतियाए ला जा आधा आधा से जस्ती हमने हंसी ला जा
1: तो चला हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ऊपर अपन परिवार के हमेशा सज्जो कर रखिए कहे कि परिवार सबसे बड़ा हविदिता।
0: हाँ तो हम जाते काफे नुआ पिए नीतू जाते हो अपन बिना
1: नाश्ता करिया जा और आज के चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ा रह बहुत बहुत धन्यवाद हमने के सचेत से हम दोनों की तरफ से
0: नमस्ते, नमस्ते।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अभी। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। 4 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। पिचिकों, थ्रियानो और बगातेल में कभी वीरान न पड़ी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है। शुगर केन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सहकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। साथ ही लंबे समय से कम उत्पादन और कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे खेतीहरों को भी सहयोग दिया जा रहा है। इस परियोजना के तहत गुरुवार को पिचिकों में एक स्थल निरीक्षण किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपए की अतिरिक्त मासी सहायता में बदलाव किया जाएगा। अब एक नई इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा 15,000 रुपए की डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी। इस नई सहायता में व्यक्ति के हैंडीकैप और उसके रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। ये बात सोशल इंटीग्रेशन मंत्री ने 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहयोग पर आयोजित एक सिंपोजियम में कही। अज़रबैजान में राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने कहा कि दुनिया में करोड़ों लोग अब भी उचित आवास सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने अधिक समावेश और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर भी बल दिया। मॉरिशस में सरकारी अस्पतालों में इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में 2 विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर मॉरिशस आए हुए हैं और जिन्होंने यहां की मेडिकल टीमों के साथ अपना अनुभव साझा किया। दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल मागरवी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉन्सन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई प्रक्रियाएं की गई। इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है, परंतु दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। गमजिन

0: कातों उकुले में रामजीन लेन अंग्रे कातों उकुले में 44 साल के 44 years old के श्री प्रेम किशन मनराज, श्री प्रेम किशन मनराज जिन्हें सब लोग विकी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के घर रामदीन लेन अंग्रे कातों उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो At 9 a.m. Royal Road Floreal में 62 साल की 62 years old की श्री सत्यानंद राज सनमुखिया जिन्हें सब लोग मतन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोडोरोज फ्लैग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो आफ्टरनून एट 2। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: Dil se mile dil.
4: शाम के 4:05 हो रहे और फ्री रेडियो मनोरंजन 94.95 हमारा प्रसारण चल रहा है। प्रस्तुत है रोमांटिक गीतों की महफिल दिल से मिले दिल, अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। आज है गुरुवार की 21 मई 2026। स्वीकार कीजिए अपने हौसला दोस्त अजय प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, और आज है रंगीन और मस्तानी गुरुवार की शाम। इस शाम को रंगीन बनाएंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ और कुछ शेर व शायरी भी होंगी। चलिए शुरू करते हैं दिल से मेरे दिल प्रोग्राम को एक ज़बरदस्त गीत के साथ। फिल्म एक हसीना दो दीवाने से लिया गया।

दो कदम तुम भी चलो दो कदम हम भी चले और ऐसे में अगर किसी साथी का साथ मिल जाए तो कदम से कदम मिला के ये मंजिल कट ही जाती है। साथी ऐसा हो कि जीवन भर साथ दे, साथी ऐसा हो कि जीवन भर हमें प्यार करे, साथी ऐसा हो जो हमसे कभी जुदा ना हो।

काश को इतना प्यार किसी से करता कि कोई किसी से रूठा न रहता। काश कोई किसी से इतना प्यार करता कि कोई रूठा न रहता। इस प्यार की बहाव में सभी लोग बह जाते तो कितनी अच्छी बात होती। आज दिलों में कितनी नफरतें हैं, आज दिलों में कितने शिकवे गिरे हैं कि आज किसी को इतना प्यार कर सकता।

है क्या कोई अपनी जान से भी ज्यादा किसी से प्यार कर सकता है? है कोई ऐसा जो अपनी जान से भी ज्यादा किसी को अपना प्यार दे सकता है? पता नहीं।

जान से भी बढ़कर किसी से आप प्यार करें तो उसे जुनून कहते हैं और प्यार में जुनून भी है दीवानगी भी है और कोई कहता है मेरा प्यार भी तू है मेरा संसार भी तू है मेरा सब कुछ तू है अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं क्या ऐसा प्यार आपने कभी किया है किसी से अगर हाँ तो अच्छी बात है

बेशक सौ बरस से अच्छे हैं प्यार के ये दो चार दिन, और प्यार के ये दो चार दिन जो है इसे जी ले प्यार से मोहब्बत से। कभी कभी छोटी छोटी बातों में ढेर सारा प्यार छुपा होता है, सो छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। और अगर पहली नज़र में किससे प्यार हो जाए तब तभी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। होता है होता है, कभी कभी पहली नज़रों का प्यार भी क्या रंग लाता है।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा,

0: अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

भला ऐसा भी हो सकता है कि लाखों है यहाँ दिलवाले प्यार प्यार नहीं मिलता। कभी कभी प्यार में इतने गम आ जाते हैं कि प्यार के घूंट को पीना पड़ता है। और पहला प्यार को अगर भुलाया नहीं जा सकता तो कैसे जिया जाए।

किसी का मिलना या ना मिलना तो किस्मत की बात है। अगर किस्मत में किसी का प्यार है तो मिल ही जाता, अगर किसी किस्मत में किसी का प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसी गीत के साथ ही, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, फिल्म जहर से लिया गया। इसी गीत के साथ ही दिल से बने दिल प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। रोमांटिक गीतों की महफिल यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। ठीक 5 बजे आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम। जी हाँ, हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी। शाम के 4 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब हम आपसे मिल रहे सैटरडे मॉर्निंग को। जी हाँ, हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 6 से 9 बजे तक MBC रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजाना मस्त मॉर्निंग शो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। और जय प्रताप सिंह से ताल्लुक की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम में एक बार फिर कीर्ति और सुरभि की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए और संस्कृत में बोलना सीखिए। तो चलिए अद्यतन सत्र का प्रारंभ करें प्रार्थना से।
2: ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: हसामि वयम् हसामः।
1: अहम् हसामि वयम् हसामः।
0: श्रोताओं, तो ये हो गई आप लोगों के लिए आवृत्ति। चलें अब आज के अभ्यास को देखें, जो इस प्रकार

0: सति ते विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात वह विद्यालय जाता है, वे सब विद्यालय जाते हैं।
1: सा मंदिरं गच्छति, ताः मंदिरं गच्छन्ति।
0: सा मंदिरं गच्छति, ताः मंदिरं गच्छन्ति। वह मंदिर जाती हैं, वे सब मंदिर जाती हैं।
1: त्वं कुत्र गच्छसि, यूयं कुत्र गच्छथ।
0: त्वं कुत्र गच्छसि, यूयं कुत्र गच्छथ। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो।
1: अहम् ग्रामं गच्छामि, वयं ग्रामं गच्छामः।
0: अहम् ग्रामं गच्छामि, वयं ग्रामं गच्छामः। मैं गांव जा रहा हूँ, हम गांव जा रहे हैं।
1: सः पुस्तकं पठति, ते पुस्तकं पठन्ति।
0: सः पुस्तकं पठति, ते पुस्तकं पठन्ति। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे सब पुस्तक पढ़ रहे हैं।
1: सा पाठं पठति, ताः पाठं पठन्ति।
0: सा पाठं पठति, ताः पाठं पठन्ति। वह पाठ पढ़ रही हैं, वे सब पाठ पढ़ रही हैं।
1: त्वं किं पठसि, यूयं किं पठथ।
0: त्वं किं पठसि, यूयं किं पठथ। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम सब क्या पढ़ रहे हो।
1: अहम् श्लोकं पठामि, वयं श्लोकं पठामः।
0: अहम् श्लोकं पठामि, वयं श्लोकं पठामः। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, हम श्लोक पढ़ रहे हैं।
1: सः निबंधं लिखति, ते निबंधं लिखन्ति।
0: सः निबंधं लिखति, ते निबंधं लिखन्ति। वह निबंध लिख रहा है, वे सब निबंध लिख रहे हैं।
1: सा पत्रं लिखति, ताः पत्रं लिखन्ति।
0: सा पत्रं लिखति, ताः पत्रं लिखन्ति। वह पत्र लिख रही हैं, वे सब पत्र लिख रही हैं।
1: त्वं किं लिखसि, यूयं किं लिखथ।
0: त्वं किं लिखसि, यूयं किं लिखथ। तुम क्या लिख रहे हो, तुम सब क्या लिख रहे हो।
1: अहम् पाठं लिखामि, वयं पाठं लिखामः।
0: अहम् पाठं लिखामि, वयं पाठं लिखामः। मैं पाठ लिख रहा हूँ, हम सब पाठ लिख रहे हैं।
1: सः फलं खादति, ते फलं खादन्ति।
0: सः फलं खादति, ते फलं खादन्ति। वह फल खा रहा है, वे सब फल खा रहे हैं।
1: सा मोदकं खादति, ताः मोदकं खादन्ति।
0: सा मोदकं खादति, ताः मोदकं खादन्ति। वह लड्डू खा रही हैं, वे सब लड्डू खा रही हैं।
1: त्वं किं खादसि, यूयं किं खादथ।
0: त्वं किं खादसि, यूयं किं खादथ। तुम क्या खा रहे हो, तुम सब क्या खा रहे हो।
1: अहम् ओदनं खादामि, वयं ओदनं खादामः।
0: अहम् ओदनं खादामि, वयं

0: ओदनम खादामह। मैं भात खा रहा हूँ। हम सब भात खा रहे हैं।
1: सह जलम पिबती। ते जलम पिबंती।
0: सह जलम पिबती। ते जलम पिबंती। वह जल पी रहा है। वे सब जल पी रहे हैं।
1: सा चायम पिबती। ताह चायम पिबंती।
0: सा चायम पिबती। ताह चायम पिबंती। वह चाय पी रही हैं। वे सब चाय पी रही हैं।
1: त्वम किम पिबसी। यूयम किम पिबथ।
0: त्वम किम पिबसी। यूयम किम पिबथ। तुम क्या पी रहे हो। तुम सब क्या पी रहे हो।
1: अहम दुग्धम पिबामि। वयम दुग्धम पिबामः।
0: अहम दुग्धम पिबामि। वयम दुग्धम पिबामः। मैं दूध पी रहा हूँ। हम सब दूध पी रहे हैं।
1: सः जनकं नमति। ते जनकं नमन्ति।
0: सः जनकं नमति। ते जनकं नमन्ति। वह पिताजी को नमन कर रहा है। वे सब पिताजी को नमन कर रहे हैं।
1: सा ईश्वरं नमति। ताह ईश्वरं नमन्ति।
0: सा ईश्वरं नमति। ताह ईश्वरं नमन्ति। वह ईश्वर को नमन कर रही हैं। वे सब ईश्वर को नमन कर रही हैं।
1: त्वं कं नमसि। यूयं कं नमथ।
0: त्वं कं नमसि। यूयं कं नमथ। तुम किसको नमन कर रहे हो। तुम सब किसको नमन कर रहे हो।
1: अहम गुरुं नमामि। वयम गुरुं नमामः।
0: अहम गुरुं नमामि। वयम गुरुं नमामः। मैं गुरु को नमन कर रहा हूँ। हम सब गुरु को नमन कर रहे हैं।
1: सः शीघ्रं चलति। ते शीघ्रं चलन्ति।
0: सः शीघ्रं चलति। ते शीघ्रं चलन्ति। वह तेज चल रहा है। वे सब तेज चल रहे हैं।
1: सा मंदं चलति। ताः मंदं चलन्ति।
0: सा मंदं चलति। ताः मंदं चलन्ति। वह धीरे चल रही हैं। वे सब धीरे चल रही हैं।
1: त्वं कुत्र चलसि। यूयं कुत्र चलथ।
0: त्वं कुत्र चलसि। यूयं कुत्र चलथ। तुम कहाँ चल रहे हो। तुम सब कहाँ चल रहे हो।
1: अहम गृहं प्रति चलामि। वयम गृहं प्रति चलामः।
0: अहम गृहं प्रति चलामि। वयम गृहं प्रति चलामः। मैं घर की ओर चल रहा हूँ। हम सब घर की ओर चल रहे हैं।
1: सः शीघ्रं धावति। ते शीघ्रं धावन्ति।
0: सः शीघ्रं धावति। ते शीघ्रं धावन्ति। वह तेज दौड़ रहा है। वे सब तेज दौड़ रहे हैं।
1: सा मंदं धावति। ताः मंदं धावन्ति।
0: सा मंदं धावति। ताः मंदं धावन्ति। वह धीरे

0: दौड़ रही हैं, वे सब धीरे दौड़ रही हैं।
1: त्वं कथं धावति, यूयं कथं धावथ।
0: त्वं कथं धावति, यूयं कथं धावथ। तुम कैसे दौड़ रहे हो, तुम सब कैसे दौड़ रहे हो।
1: अहम मंदम धावामि, वयम मंदम धावामः।
0: अहम मंदम धावामि, वयम मंदम धावामः। मैं धीरे दौड़ रहा हूँ, हम सब धीरे दौड़ रहे हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुत्र का अर्थ है कहाँ, किम का अर्थ है क्या, कम का अर्थ है किसको पुल्लिंग में, और कथम का अर्थ है कैसे।

0: प्रिय श्रोताओं, हम अपने जानातु संस्कृतम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का सही उच्चारण सिखाते हैं। आप हमें प्रथम बार ध्यान से सुनिए, उसके बाद हमारे साथ दोहराइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
1: धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
0: समवेतायुयुत्सवः,

0: अब पूरी एक पंक्ति को एक बार सुनिए, फिर दोहराइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
1: धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे

संजय। इस बार पूरे श्लोक को सुनिए, उसके बाद दोहराइए। धर्म

0: चैव किम कुर्वत संजय।
1: इस श्लोक में धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो श्रोताओं, यहाँ पर हम समाप्ति की ओर पहुँच गए हैं। आइए शांति मंत्र पढ़ें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।

0: Centered 95.5 North, South 95.6 95.6 East, West 98.2
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इस समय शाम के 5:27 हुए।
4: राम रसधारा, रसधारा।
3: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबको रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है और आज के इस रामायण सत्संग का श्री गणेश करते हैं श्री राम जी की स्तुति के साथ।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम, जय जय हनुमान। श्रोताओं, पिछले 17 मई से आगामी 15 जून तक सनातन धर्म पंचांग के अनुसार हम सब अधिक मास में होंगे। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास इसलिए आता है जिससे कि सूर्य पर आधारित और चंद्रमा की गति पर आधारित दोनों पंचांगों में तालमेल लाया जा सके। इस अधिक मास में कोई विशेष त्यौहार तो नहीं होता, लेकिन साधकों से मांग की जाती है कि वो अपनी साधना को और भी सुदृढ़ बनाए। ऐसे पुरुषोत्तम मास के बीच अनेक संस्थाओं में रामायण और भगवद गीता पाठ और भी ज्यादा गति पकड़ लेते हैं।

0: रसधारा
1: जी हाँ, रेडियो मनोरंजन के लहर पर आप सुन रहे हैं राम रसधारा संजय के साथ। आप सबों का हार्दिक अभिवादन है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्रोताओं, हमारी ये मान्यता है कि भगवद गीता में कुरुक्षेत्र रणभूमि के बीच जो कुछ भी श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को उपदेश के तौर पर सुनाते हैं, उन सिद्धांतों को श्री रामचंद्र जी अपने जीवन के माध्यम से एक उदाहरण बन के हमें रामचरितमानस में दर्शाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हमें वो सीख देते हैं, अपने महल की सुख सुविधा, अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर वन में हर मुश्किलों को झेल कर महापराक्रमी रावण का वध करके किस तरह राम जी युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनते हैं।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन के लहरों पर प्रोग्राम राम रसधारा भाई संजय के साथ जय सियाराम जय जय हनुमान। श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आज का हमारा राम रसधारा दोनों श्री राम चरितमानस और भगवद गीता पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं, पवना पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जशानाम मकरश्चाश्मि श्रोतासामस्मि जानवी। कि इस पूरे संसार को स्वच्छ करने वालों में मैं पवन हूं, मैं पवन हूं। और जब पवन की बात होती है तो अवश्य मन में हनुमान जी आते हैं। इस पूरे संसार को स्वच्छ करने वालों में मैं पवन हूं, और सभी शास्त्रवान योद्धाओं में मैं श्री राम हूं। राम शास्त्र ब्रिताम अहम। सो चलें इस पुरुषोत्तम मास में हम दोनों योगेश्वर श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम श्री राम जी का ध्यान करें।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की रहनों पर की लहरों पर राम रसधारा संजय के साथ। श्रोताओं, हमने आपको बताया कि रणभूमि में श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि योद्धाओं में मैं श्री राम हूं, और उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी निरंतर श्री राम जी का ध्यान करते हुए होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। श्री राम जी का अवतरण अनेक बार करोड़ों बार हुआ है और हमेशा होता रहेगा। श्री राम जी का अवतार उसी समय होता है जब हम अपने हृदय में श्री राम जी का अवतरण करते हैं।

0: राम रसधारा रसधारा
1: शाम के 5:55 होने को हैं। राम रसधारा के लगभग अंत तक हम आ पहुंचे हैं। आप सबों को कोटि-कोटि धन्यवाद। एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अंतर्गत आप रामायण पाठ अवश्य करें या तो आप भगवद गीता पाठ अवश्य करें, लेकिन अपनी साधना को और भी सुदृढ़ करें। चलते चलते आपको फिर से निवेदन करते हैं कि अगले गुरुवार को हम एक नौजवानों की टोली लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं श्री राम जी के दरबार में। उस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप अवश्य ट्यून करें रेडियो मनोरंजन। 6 बजे आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद संगीत का कार्यक्रम यहां पर जारी रखा जाएगा। संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय।

0: 6 बजे के समाचारों में डालते हैं नजर। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर, दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली 3,000 रुपए की अतिरिक्त मासिक सहायता में बदलाव लाया जाएगा। अब एक नया इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव, जो मौजूदा 15,000 रुपए की डिजेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच बैंक ऑफ मॉरिशस ने कल की रेट बढ़ाने का फैसला लिया। इसका असर अब आम लोगों और कारोबार पर भी पड़ सकता है। हाउसिंग लोन, गाड़ी लोन और दूसरे कर्ज महंगे होने की है आशंका। विदेशी कामगारों की भर्ती इन दिनों चर्चा का विषय। इस क्षेत्र में नए नियमों के तहत विदेशी कामगारों को लाने के लिए नियोक्ताओं को अब भर्ती एजेंसियों के जरिए ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पेचिकों, ट्रियानो और बगाटेल में कभी वीरान परी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है। शुगर केन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सहकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। और विदेशी स्तर पर भारत के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्म रातें, पानी की बढ़ती मांग और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर साफ दिखाई देने लगा है और पारा 48 डिग्रीज को पार कर चुका है। नमस्कार और आदाब। सांकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों की जाने वाली 3,000 रुपए की अतिरिक्त मासिक सहायता में बदलाव लाया जाएगा। अब एक नया इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा 15,000 रुपए की डिजेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी। इस नई सहायता में व्यक्ति के हैंडीकैप और उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। ये बात सोशल इंटीग्रेशन मंत्री ने 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहयोग पर आयोजित एक सिंपोजियम में कही। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: मॉरिशस में 86,000 लोग विकलांगता की स्थिति में जी रहे हैं। हर उम्र के लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था है, लेकिन युवा वयस्कों की बात अलग है। बीस वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति को फिर से परिभाषित करने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान कई विचार सामने आए। इनमें ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस एक्ट में सुधार शामिल हैं, जो 35 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली हर कंपनी को अपने कम से कम 3% पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्य करता है। एक अन्य प्रस्ताव CSR फंड में वृद्धि की समीक्षा, जिसके तहत प्रत्येक कंपनी को पिछले वर्ष की अपनी कर योग्य आय का 2% योगदान देना अनिवार्य है। गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत थेरापिस्ट भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें श्रम मंत्रालय के नेशनल रेम्यूनरेशन बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाए। अशोक सुभो ने सुझावों पर गौर करते हुए राष्ट्रीय नीति में सुधारों की घोषणा की। साठ प्रतिशत से कम विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए एक इंक्लूसिव यूनिट अलाउंस लागू किया जाएगा, यानी 15,000 के पेंशन के साथ साथ इच्छा यही है कि 7,500 तक का अलाउंस हम दे पाएं। चिकित्सा स्तर पर ध्यान दिया जाएगा।

0: de classification ben, médicale, les coûts, beaucoup plus larges.
1: इसके अलावा एनजीओज नई राष्ट्रीय नीति लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार, पहुंच सुविधा यानी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने और रोजगार हेतु प्रशिक्षण के पक्ष में हैं।
2: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच बैंक ऑफ मॉरिशस ने कल की रेट बढ़ाने का फैसला लिया। इस फैसले का असर अब आम जनता और कारोबार पर भी पड़ सकता है। हाउसिंग लोन, गाड़ी लोन और दूसरे कर्ज महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। कई श्रमिक संघों ने आज एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जिसके दौरान विदेशी कामगारों के अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठनों ने उनके लिए बेहतर नौकरी परिस्थितियों की मांग की भी की है। इसके अलावा आने वाला बजट, बढ़ती महंगाई और 40 घंटे के कार्य प्रणाली जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विदेशी कामगारों की भर्ती इन दिनों चर्चा में है और अक्टूबर 2025 से इस क्षेत्र में नए नियम लागू किए गए हैं जिनके तहत विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए नियोक्ताओं को अब भर्ती एजेंसियों के जरिए ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल मॉरिशस में 51,000 से ज्यादा विदेशी कामगार वर्क परमिट के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार्यरत हैं। मॉरिशस में अवैध रूप से रह रहे 32 विदेशी कामगारों को आज गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ये कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे पूर्वी इलाके लावोंचे की एक डोमिटोरी में चलाई गई, जिसे ब्रिजवेजा की सीआईडी ने अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए लोग बांग्लादेश, भारत और नेपाल के नागरिक बताए जा रहे हैं और उन पर मॉरिशस में अवैध रूप से रहने का आरोप है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीनियर प्रिजनेट जज सैयद मंसूर अली शाह ने इस गुरुवार को पोटलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उनके साथ सीनियर काउंसिल और बॉ काउंसिल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान सैयद मंसूर अली शाह, जो इस समय लाहौर यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में संवैधानिक कानून के चेयर ऑफ एक्सेलेंस और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इसके अलावा बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के भी चर्चा हुई। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि पेचिको, थ्रियानो और बगातेल में कभी वीरान पड़ी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है। शुगर केन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सहकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। साथ ही लंबे समय से कम उत्पादन और कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे खेतीहरों को भी सहयोग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत पिचिकों के एक स्थल का दौरा किया गया। सहा ओनो की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा जानिए का विवरण।
1: खेतों में पुनर्वास कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं। उद्देश्य खाली जमीन को फिर से खेती योग्य बनाना और उत्पादन को आधुनिक बनाना है। पिचिकों, थ्रियानो और बगातेल में 800 से अधिक एकड़ खाली जमीन की पहचान की गई है, जहां 3 वर्षों में पुनर्वास किया जाएगा। किसानों के लिए ये पहल नई उम्मीद लेकर आई है, हालांकि इस क्षेत्र में अब भी कई कठिनाइयां मौजूद हैं। मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे खेत संभालते हैं, मुझे खुशी होती यदि कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चों के नाम किया होता। खेतीहरों ने कई सालों तक मेहनत की और

0: थम गई। सरकार और MCI की मदद से शक्कर पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य पूरा होगा। ये परियोजना मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी और कई कृषि साझेदारों द्वारा संचालित है ताकि सामूहिक तरीके से भूमि को सींचा जाए, मशीनों के उपयोग को आसान बनाया जा सके और उत्पादन में सुधार आए।
1: Qui occupent à peu près 20% des terres et le reste 80% c'est les cooperative growers.

0: तो वो शायद नहीं लेगा, लेकिन ड्रोन स्प्रेयर दिन में 25 एकड़ जमीन पर काम करता है, उसका इस्तेमाल वो जरूर करेगा। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने गन्ना क्षेत्र को संरक्षित करने और उसे आधुनिक बनाने के महत्व पर जोर दिया। मकसद है 2.5 लाख टन शक्कर की पैदावार स्पेशल शुगर बढ़ाना होगा। ड्रोन से जानकारी मिलती है, हम गन्ना उत्पादन में माहिर हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में हम ये सेवा देते हैं। शक्कर उत्पादन से परे इस परियोजना का उद्देश्य कृषि भूमि प्रबंधन के लिए अधिक टिकाऊ और बेहतर योजना वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
1: दुनिया भर में अस्थमा बीमारी से पीड़ित 350 मिलियन लोग से ज्यादा हैं। मॉरिशस में एक चेस्ट क्लिनिक है जहां पर अस्थमा बीमारी से पीड़ित लोग इलाज पाने के लिए जाते हैं। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: सांस लेना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन दुनिया भर में 350 मिलियन से अधिक ऐसे लोग हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं। ये एक पुरानी इन्फ्लामेटरी बीमारी है जिससे कि सांस लेने का मार्ग पतला होता जाता है और हर बार सांस लेने में परेशानी होती है। पोर्ट लुइस में एक सरकारी स्वास्थ्य क्लिनिक है, चेस क्लिनिक, जहां पर इससे संबंधित विशेष सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तागोब नीलापन ने सभी जरूरी जांच की, जिसके बाद उसे पता चला कि उसे अस्थमा है। अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक दीर्घकालिक श्वास की बीमारी है जिसमें वायु मार्ग में सूजन और संकुचन के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। सीने में जकड़न, लगातार खांसी होती है। कई बातों से अस्थमा के लक्षण शुरू हो सकते हैं या ये गंभीर भी हो सकता है। बेहतरीन इलाज बचाव है। जिन लोगों को एलर्जी है, बाद में ठीक से सांस न ले पाने के कारण लक्षण दिखने लगते हैं। साथ में पर्यावरण संबंधी कारण भी है, जैसे कि प्रदूषण, तनाव आदि। मरीज को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि स्थिरता चरण कब है और कब स्थिति बिगड़ रही है, ताकि समय पर वो अपना इलाज करवाएं, बचाव कर सके। पंप का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अस्थमा होने पर दैनिक तौर पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एक सामान्य जीवन जी सकते हैं।
1: अज़रबैजान में राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों लोग अब भी उचित आवास सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने अधिक समावेश और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्हें सुनते हैं।
3: A formidable and unprecedented humanitarian challenge indeed.
0: ये एक अभूतपूर्व और वृहद मानवतावादी चुनौती है। ऐसी चुनौती जो मानव सम्मान, सामाजिक स्थिरता और टिकाऊ विकास पर आधारित है। ये फोरम सही समय पर आया है जिसमें अनुभव, ज्ञान और प्रथाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, ताकि टिकाऊ नगर योजना और विकास को बढ़ावा मिले। दुनिया भर में शहर तेज गति से विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये विकास बिना किसी योजना के असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के स्तर पर लाभप्रद नहीं। इससे संभावनाओं और वास्तविकताओं के बीच अंतर और बढ़ रहा है। आवास आज पनाह देने से ज्यादा अहम है। ये मानव के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और सम्मान की बात है। यदि हम टिकाऊ मानव विकास प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवास और नगर नियोजन चर्चा के केंद्र में होने चाहिए।
3: Experience of families. Housing is today more than shelter. It is a basic human need and human dignity. If we are to achieve a sustainable human development, housing and urban planning must be at the heart of public policy.
1: मॉरिशस के सरकारी अस्पतालों में इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले दो हफ्तों में दो विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर।

0: मॉरिशस आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ की मेडिकल टीमों के साथ अपना अनुभव साझा किया। दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल माघवरी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉन्सन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई प्रक्रियाएं की गई। इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। विपक्ष के विप एड्रियन जुवाल ने पोर्ट लुई स्थित अपने दफ्तर में प्रेस को संबोधित किया। ये राष्ट्रीय सभा में मंगलवार को उठाए गए उनके सवालों के बाद हुआ। एड्रियन जुवाल का कहना है कि कई मामलों में सरकार को और ज्यादा पारदर्शिता दिखानी चाहिए। मॉरिशस के हाजी अब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और कई शहरों में हज से पहले की आखिरी तैयारियां चल रही हैं। 24 मई से शुरू होने वाले हज में इस साल करीब 1500 मॉरिशन लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस पाक सफर को लेकर हज अदा करने वाले लोगों में खुशी और खास उत्साह देखा जा रहा है। और विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, भारत के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्म रातें, पानी की बढ़ती मांग और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है और तापमान 48 डिग्रीज को पार कर चुका है। ज्यादा विस्तार आस्था गोबिंद के साथ।
1: भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना समेत कई राज्य इस भीषण हीट वेव का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले कई दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। भीषण गर्मी का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और बिजली तथा पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्वी भारत और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल देश के बड़े हिस्से में गर्मी से राहत के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। लगातार बढ़ती चरम मौसम परिस्थितियां जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती की ओर भी संकेत कर रही है। आने वाले वर्षों में ऐसी ही भीषण गर्मी की घटनाएं और बढ़ सकती है।
0: कई दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 दिनों के दौरे पर रही, जिसके ठोस परिणाम सामने आए। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा केवल दोनों देशों के संबंधों तक सीमित नहीं रही, अपितु बदलते वैश्विक हालात, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आस्था गुबिन।
1: इटली दौरे के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच विस्तृत बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति, रूस यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम रहा भारत और इटली के संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाना, जिसे दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सहयोग का संकेत माना जा रहा है। बैठक में रक्षा सहयोग, आधुनिक टेक्निक, AI, अंतरिक्ष, शिक्षा, संस्कृति और समुद्री सुरक्षा जैसे सेक्टरों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन और नई टेक्निक के संयुक्त विकास पर भी जोर दिया। साथ ही अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत निर्माण और समुद्री संपर्क जैसे सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने की दिशा तय की गई।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर

0: तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
1: व्यापार और निवेश भी इस यात्रा का अहम हिस्सा रहा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और इटली ने वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जिनमें रक्षा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति और लोगों के आवागमन से जुड़े क्षेत्र शामिल रही। स्वास्थ्य सेक्टर में भारतीय नर्सों के लिए इटली में नए अवसर खुलने की संभावना जताई गई। वहीं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर सहमति बनी। समुद्री सहयोग को लेकर भी दोनों देशों ने साझेदारी मजबूत करने का फैसला लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच ये सहयोग आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकता है।
2: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कोंगो में फैल रहा इबोला वायरस अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मौजूदा प्रकोप कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार वायरस का जो प्रकार सामने आया है उसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन मौजूद नहीं है। दुनिया की नज़रें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है, परंतु दबाव में झुकने वाला नहीं है। आस्था गुबिन।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन अगर सही जवाब नहीं मिला तो अमेरिका बहुत जल्द कड़े कदम उठा सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों की संभावना पर भी विचार किया था, लेकिन गल्फ देशों की अपील और मध्यस्थता प्रयासों के बाद फिलहाल उन योजनाओं को रोक दिया गया है। उधर ईरान ने कहा कि उसे अमेरिका की ओर से मिले हैं और उनकी समीक्षा जारी है। तेहरान का कहना है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी नए संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इस बीच कतर, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान जैसे देश तनाव कम कराने की कोशिशों में सक्रिय बताई जा रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के तेहरान दौरे को भी इसी कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां एक ओर अमेरिका दबाव और बातचीत दोनों रास्ते खुले रखे हुए हैं, वहीं ईरान भी साफ संकेत दे रहा है कि वो बातचीत चाहता है लेकिन किसी दबाव में फैसला नहीं करेगा।
2: अब फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। इस्तांबुल में यूरोपा लीग फाइनल पूरी तरह एस्टन विला के नाम रहा। एमबीसी स्पोर्ट्स के 11 चैनल पर दिखाए गए इस मुकाबले में इंग्लिश क्लब ने फ्रीबर्ग को 3-0 से हरा कर पहली बार यह बड़ा यूरोपियन खिताब जीत लिया। और आपको बता दें कि शुरू से आखिर तक एस्टन विला का दबदबा साफ नजर आया और टीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपने समर्थकों को यादगार जीत का तोहफा दिया। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पश्चिम की ओर से बादलों का एक झुंड कल सुबह से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से एक एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके की ओर आ रहा है और कल दोपहर को हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात थोड़े से बादल घेराएंगे, जबकि कल सुबह दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर

अंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:39 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:39 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:34 पर।

0: देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आयुषोक समाचार सुनते हैं। रोड प्लेम्बुआ लिस्काली में, रोड प्लेम्बुआ लिस्काली में 83 साल की, 83 years old की श्रीमती ज्ञानती गोइंडो, श्रीमती ज्ञानती गोइंडो जिन्हें सब लोग ज्ञानती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री बुलदेवा मुकेश के घर रॉयल रोड प्लेम्बुआ लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शिवाला रोड लावोंचुए में 73 साल की, 73 years old की श्री पूरन लचन जिन्हें सब लोग रामेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री सुदेश लचन के घर शिवाला रोड लावोंचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडुमास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड फ्लोरियाल में 62 साल की, 62 years old की श्री सत्यानंद राज सनमुखिया जिन्हें सब लोग मतन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोदो रोज फ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो आफ्टरनून एट 2। रामदीन लेन ऑंग्रे कातन ओकुले में 44 साल के, 44 years old के श्री प्रेम किशन मनराज जिन्हें सब लोग विकी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के घर रामदीन लेन ऑंग्रे कातन ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:31 हो गए हैं।

0: बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
1: क्या?
0: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता?
1: मैं क्यों लिखूंगी?
0: तो ये सारे कार्ड्स
1: वो तो
0: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
1: नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
0: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?
2: नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं मेरे दोस्त। आज थर्सडे की रात है और ऐसे टाइम पर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ हम भी इस इवनिंग की शुरुआत कर रही है।

ये दोस्तों इस वक्त आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाम के 6:39 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। और आज की जो नई सोच है वो है जो काम कर रही है या फिर करने वाले हैं या फिर आप लोगों ने कर लिया है और उसका जो नतीजा है इसके इंतजार में है। इसका मतलब है कि वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त लगेगा। इट्स ओके, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, रोम इज नॉट बिल्ड इन वन डे। आराम से इत्मीनान होकर के आप उस जो काम आपने किया है या फिर कर रहे हैं उसके जो परिणाम है उसके इंतजार के लिए आपको धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि वक्त लगता है। कहा जाता है ना कि धीमे आंच पर जब भोजन बनता है ना तो उसका जो स्वाद है ना बहुत ही अलग होता है। इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो रास्ते में बहुत सारी असफलताएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, असफलताएं जब आएगी इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएंगे, बल्कि उन सभी असफलताओं के बाद एक सफलता निश्चित होगी। इन सभी असफलताओं के होने के बाद आप अंदर से आपको एक सुकून मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ वक्त लेता है और मैंने वक्त का पूरा पूरा मतलब कैसे मैं कहूँगा ओबे किया और अंततः मुझे इसकी प्राप्ति हुई। सो इट्स ओके, अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, अगर कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर।

चुनने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। शनेह पंथाह शनेह कांतः, शनेह पर्वत माननः, शनेह विद्याः, शनेह वित्तम, पंचतानि शनेह शनेह। इसका मतलब ये है, रास्ता जो है वो धीरे धीरे कटता है, कपड़ा धीरे धीरे बुनता है, पर्वत धीरे धीरे धीरे धीरे

चढ़ा जाता है। विद्या और धन भी धीरे धीरे प्राप्त होती है। ये पांचों धीरे धीरे ही होते हैं और ये जो सोच है धीरे धीरे आ रही है। कहां से? कनाडा से। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे जो हमवतन हैं, जो कनाडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv, उनका नाम है विनय गोबिंद। ये जो सोच है अपने आप में बहुत ही बढ़िया है और इस सोच में जो सत्य है, जो ईमानदारी की जो सुगंध है, वो यहां पर महसूस की जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एक काम करते हैं और इतने आसानी से हमें वो नतीजा नहीं मिलता है, क्योंकि ये काम हमने सत्यता के बल पर और ईमानदारी के फाउंडेशन पर, की बुनियाद पर हम लोगों ने किया है, लेकिन वो परिणाम एक ना एक दिन तो मिलेगा ही ना। तब जाकर के एक अंदर में एक तरह की तसल्ली मिलेगी और हम ऐसे ही कहेंगे, शाबाश मेरे दोस्त, आपने करके दिखा दिया। उन सभी दोस्तों को हम यहां पर शाबाशी देना चाहेंगे जो कड़ा परिश्रम करने के बाद, कई दिनों के बाद, कई सप्ताह के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कई वर्षों के बाद, उनको अपना परिणाम मिला। तब जाकर के उनकी जो शाबाशी है वो निश्चित हुई। So congratulations to you people. जिस तरह से इस्तांबुल में आपको पता है यूरोपा लीग फाइनल पूरी तरह से एस्टन विला के नाम रहा, और आपको पता दे कि 1982 के बाद इस तरह की जीत हासिल हुई और एस्टन विला का जो दबदबा साफ नजर आया और जो टीम है उन्होंने शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी जीत हासिल की। अगर एस्टन विला 44 साल के बाद इस तरह की जीत हासिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या फिर घर की ओर जा रही है, तो इतना ज़्यादा गाड़ी तेजी रफ्तार तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे चल भाई, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर बारिश हो रही है तो और ज़्यादा सावधान होकर के आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा जी। इस वक्त रात के 7:05 हो गए हैं। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर रेडियो मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, पहले सेगमेंट फॉर यो दिलों की आवाज़ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जहाँ पर आपको फ़ोन करना है ऑन 402-4070 पर 402-8070 पर। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाएंगे। यू मे ऑल्सो सेंड इस मैसेज इज हैपनिंग ऑन 5250-6200। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2-3 गाना मैं चलाने वाला हूँ, 2-3 गाने चलाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले मैसेजेस मिल गए हैं। तो ये गाने आप लोगों के नाम, और उसका पूरा पूरा आनंद उठाइए। अगर आप किचन में हैं, बिजी हैं, कुछ पका रहे हैं, कुछ पक रहा है, या फिर आप

जी हाँ दोस्तों, प्यार तो हम लोगों ने भी आप लोगों से बहुत किया है, इसलिए निभाने के लिए आ गए हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप आए तो बाहर आए और यहाँ पर एक मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज मिला है। आदाब अभी, वेलकम ऑन रेडियो मनोरंजन। अच्छा, आप मुझे वेलकम कर रही है, अच्छी बात है। हाँ, हर हफ्ते तो एक ही बार आता हूँ, वेलकम तो बनता है मेरे दोस्त। ये गाना जिहाद और रेहाना और जालिला के लिए अगला ये गाना हो जाए जो फिनिक्स के रहने वाले हैं। हेलो अभी, दिस इज कौन है ये? अगला गाना प्लीज मेरे पति राज के लिए हो जाए। अच्छा, ये तो आंटी अनीता हैं जो फिकोफ्ला के रहने वाली हैं, उन्होंने कहा पति राज। साथ ही साथ है अंतिश, वी ऑल्सो हैव अंकुश, मनीषा, अशीमा, हिमेशा, आधिया, पोते हैं आंश और उनके सभी दोस्तों के नाम। आपने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश

की है जो थोड़ी देर में उसको हम चलाएंगे. सो वेटिंग फॉर यू माई दोस्त ऑन 402-80-70 पर 4-0-2-0-7-0 पर. अच्छा नंबर मैंने दे दिया है, मैसेज भी आप भेज सकते हैं ऑन 5250-6200.

जी दोस्तों, यहाँ पर पुकार का जो ये गीत है विक्रांत ने इसकी फरमाइश की है, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। और उन्होंने कहा कि विराज, साथ ही साथ रवि और उनके सभी परिवार के सदस्यों के नाम ये हो जाए।

And right now we do have Didi Inchu. ये गाना खासकर आपके नाम भी हम चला रही है, जो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने डिनर ले रही है और हमारे शो को भी एंजॉय कर रही है। हेलो दीदी इंचू, क्या बात, आप हंस रहे हैं? हंसी तो फंसी।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 8:37 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात बाकी और बात भी बाकी है, और इसी टाइम पर हमारे साथ एक बर्थडे बॉय है जिनका जन्मदिन है। एक्चुअली नाम है, एक्चुअली मेरी नमस्ते नमस्ते अभी, मैं नंदा हूँ। अच्छा नंदा, ये बहुत ही खुशी की बात है नंदा कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाई से उन्होंने कहा उनके बेटे का जन्मदिन है, 38 साल का हो गया है, और बहुत बहुत सारे शुभकामनाओं का गुलदस्ता उनके भाई अविनाश दे रही हैं, आशिल दे रही हैं। वी ऑल्सो हैव अश्विना, उनकी प्यारी सी भाभी है जिनका नाम है दिव्या, और उनके पापा दीपक के नाम। लेकिन मेरी माते नंदा, आपने बर्थडे बॉय का नाम

नहीं लिखा इसमें, कैसे मैं उनको विश करूंगा। इट्स ओके, बड़े बड़े शहर में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हुआ करती हैं। सो वी डू हैव प्रकाश वेती फ्रॉम बेल्जियम, नाइस सॉन्ग सिलेक्शन अभी, थैंक यू सो मच, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये गाना हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे संतोष के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक में हमारे शो को भी एंजॉय कर रही है। इक्वली गोज टू विहान, जो इस वक्त हमें याद कर रही है फ्रॉम दिल्ली बाय लॉगिंग ऑन www.mbcradio.tv।

So, दोस्तों, it's time for me to sign off now. बहुत बहुत मजा आया. मैंने आज कम बात इसीलिए की क्योंकि आप लोगों का गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरी बातों को लेकर. तो चलिए, ये गाना खासकर उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वी डू हैव नवीन और उनके सभी दोस्तों के नाम जो मोटा ब्लॉश के हैं. सो अगला जो हफ्ता है डेफिनेटली हम लोग मिलने वाला है. टिल देन, अभी की ओर से आप सब लोगों को एंजॉय द ब्यूटिफुल इवनिंग. बाय बाय, टेक केयर.

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. MBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
3: तुम हर साल रावण को इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता।
4: तुम्हें विलन अच्छे लगते हैं ना, तो मैं आज जाकर एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसमें विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो।
5: रावण गेम के बाहर कैसे आ सकता है?
6: रावण को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जीवन।
2: रविवार 24 मई को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म रावण 2011 की मूवी। इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान और करीना कपूर। रावण

0: दिल के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: आज के रात बीफे के 21 मई के रात बा 9:04 होल बा और ई बखत आप सुनत हवा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। और जैसे सुनला आज के रात हम तोहर साथ देवत है और हमने के साथ रही अभी से लेके पूरा 2 घंटा तक, मतलब कि रात के 11 बजे तक। और आपके जोन फरमाइश बा, आपके फ़ोन कॉल्स के आधार पर ई जोन प्लेलिस्ट बनल बा पहले से, वो फिर से हम सरियेले जाब और आपके जितना शुभकामना बा प्रकट करे के, आपके जितना गीत मन बा सुने के, आप फ़ोन करके या मैसेज भेज के ओकर मांग कर और फिर आपके ई शाम के रंगीन और सुंदर और शांतिपूर्ण बनावे के हमार जिम्मेदारी।

अभी आप सुनला सुहाना सफर आशीष रामफल के आवाज में, और अभी अभिमन्यु जी के आवाज में अयोध्या के राज सिया मांगे अयोध्या के राज आप सब कोई के नाम जेकर ये गीत मन के बहुत पसंद है।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बास पे पलटवार हुआ। कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है।
3: मुझे रोहन चाहिए।
4: मिस्टेक कर रहे हो,
5: तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
6: 8 साल के बच्चे को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए।
1: 23 मई को शनिवार NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म मद्दारी 2016 की ये फिल्म इरफान खान और जिमी शेरगिल पर फिल्म आई गई मद्दारी। भोजपुरी तड़का किरण संगे

थोड़ा इंतजार कर जेकर फोन अभी नहीं ले ले है थोड़ा घड़ी में जरूर ले वाप। और फिलहाल सोना नोयान के मशहूर गीत खाली पीले गीत के फरमाइश सकब बोले हर सप्ताह हर सेमेन के आवेला। और अब की बार ई गीत सुने चाह था वन रोजिल से साजिद और साजिद के एगो सहपाठी हवन उनकर एगो सखी हवन जे कनाडा में रहलन उनकर नाम है सरोवर और सरोवर दीना के नाम हमेशा के तरह साजिद ई अगला गीत करत हवन और साथ में आप हमार नाम भी गीत करत हवा बहुत बहुत धन्यवाद साजिद। और जितना कोई भी अभी हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ये बहुत ही मशहूर गीत जो उनकी भोजपुरी और सोना नोयान के एगो दूसरा आयाम दे दे ले बा खाली पी ले।

रात के 9:18 होल बा और आप सबको एक फोन कॉल्स आई ले जाता, बल्कि एक के बाद एक नहीं, एक ही हला बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आवा।

ये म्यूजिक से आपके इशारा मिल गया कि हमने के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हमने के मॉरिशस के कलाकार रंभा राम तोहर के आवाज में ये अगला गीत चली जुबेदा लुतुले के जाए और ये गीत मांगत हवन देखा हमने के जो न सुने होला हवन जा ई बखत के आप में से बहुत कोई बीमार रहेला जा और आप में से एक जना हवन शांता सुकारी जी से जमील फॉरेस्ट साइड से और आज शांता सुकारी जी अपन डॉक्टर खातिर ई गीत मांगत हवन उनकर डॉक्टर क्योपिप से हवन साकेर रामपत और बोलत हवन कि उनकर डॉक्टर के सब भोजपुरी गीत बहुत पसंद है तो शांता सुकारी जी आपके डॉक्टर साकेर रामपत के नाम जुबैदा लुतुले के जाए।

रात के 9:30 होलबा और इ वक्त आप रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर अपन मनपसंद प्रोग्राम सुना था भोजपुरी तड़का और भोजपुरी तड़का उ प्रोग्राम है जिकर इंतजार आप बहुत बेसब्री से करेला और थोड़ा घर ही आगे अभी हम बोलत रही कि आप में से बहुत कोई बीमार है बहुत कोई बीमार स्थिति में ये प्रोग्राम के इंतज़ार करेला जा और हमनी से बातचीत करे के घड़ी आवेला तो आपके मन के भी थोड़ा सुकून मिलेला फिर आप अपन मनपसंद कलाकार के मनपसंद गीत सुन के ओकर बोली सुन के ओकर मिठास सुन के या फिर ओकर में जोन भी मजाक बा

0: मजाक के बात होई, खेल के बात होई, इस सब से दिल बहल जाला। और सच में भोजपुरी तर का आपके जिंदगी में खुशहाली आने ला, आपके जिंदगी में सुकून आने ला। और अभी हमने के बेलिया से आत्माराम जी फोन कर लन और आत्माराम जी बोलत हवन कि वो बहुत बीमार हवन, फिर भी ऐसन बीमारी के हालत में भी आप फोन करत हवा, अपन चार गो बहिन के नाम गीत मांगत हवा। और आपके चार गो बहिन सबको जाने ला, रेडियो पर बनल, रेडियो पर जुड़ल एगो संबंध है। और इमें सुदेवी, ललिता, प्रभावती और छोटी दादी हवन जा। और आप इलोग खातिर जन गीत मांगत हवा वो फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गलबा शारदा सिन्हा के आवाज़ में, कहे तो से सजना तुम्हारी सजनिया। और ये गीत बशेरी के धनी जी के नाम जे ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद करेलन। और आप जितना कोई बीमार स्थिति में दर्द के साथ ये गीत सुनत हवा, ये प्रोग्राम सुनत हवा और आपके मन बहलता, तो आप सब कोई के नाम ये गीत। और हमार दिल से ये प्रार्थना बा कि आप सब कोई के सेहत अच्छा रही, जितना कोई बीमार हवा जा आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बजा।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना.
2: अरमान अली उर्फ हमारे अब्बा. कोई लोग अब्बा को चौक से समझाए.
3: ये कौन है?
4: पुतला.
3: पुतला नहीं, ये तुम हो.
2: तो कोई डंडे आरोप जमाए.
5: वेल डन अब्बा.
6: वेल डन अब्बा. अब्बा अब्बा
7: सुन जरा आया है फीका संदेशा.
1: शनिवार 23 मई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म वेल डन अब्बा 2010 की ये मूवी बुमन ईरानी और मनीषा लांबा पर फिल्माई गई. वेल डन अब्बा. भोजपुरी तड़का किरण संगे.
8: भोजपुरी तड़का में आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा. और देखते देखते लगभग 45 मिनट निकल गए और हमने संगे 1 घंटा और 15 मिनट अभी बाकी बा. अगला गीत के मांग करत हवन विजय बेनी प्रसाद जी. और आप बहा गौरी के आवाज़ में सुने चाहत हवा मामा और पापा अगवा के लेके. और ये गीत आप हमेशा के तरह अपन पूरा परिवार बेनी प्रसाद परिवार फिर दुली परिवार और मौदालबिया से शास्त्री बनुमाली के नाम भी करत हवा. और आपके साथ साथ जितना कोई के भी ई मनपसंद गीत है बहा गौरी के आवाज़ में मामा और पापा आप सब कोई के नाम बहुत प्यार से.

अगला जनगीत चली आतिश भगीरथी की आवाज में छोर के मोरिसवा। छोर के मोरिसवा इधर कोई के मनपसंद गीत था, बहुत के मनपसंद गीत था। और सांझ फजीर ई गीत के फरमाइश चलेला, ई बखत ई गीत सुने चाहता वन फ्रांस से एगो नानी और ओकर नाती दोनों जना जे अपन अपन देश से अलग हवन जा और बाहर भी अलग अलग देश में हवन जा, लेकिन आज फ्रांस में भेंट मुलाकात होल, साथ में उ लोग के भोजन भी होल। और शीला अपन नाती रुद्राक्ष खातिर और रुद्राक्ष अपन नानी और पूरा परिवार, नाना अपन मौसी और सब कोई के नाम ई गीत मांगत हवन जा दोनों जना। और साथ में भाई अब्बू के भी ई मनपसंद गीत है। और भाई अब्बू हमेशा की तरह आफेज असलम, अयाज, जयर, जहीरा, रईस कालाचोटी और उनकर दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम

ई अगला गीत कर थावन और जितना कोई भी अभी मॉरिशस से बाहर ई गीत सुन था वजह त मॉरिस छोरे के जो न गम बा मॉरिस छोर के मॉरिशस के जितना याद आवता वो सब ई गीत में जिया जा एक संगे चला सुनी जा

भोजपुरी बॉयज एल्बम से लेवा गल लाफोंस गीत के बाद जो अगला गीत चली वह बसंत सुपोल जी के आवाज में भाग गल खसिया। ये गीत मेरा भाई दमिया मौदालबिया से मांगले हवन और आप अपन बेटी अपन दामाद पूरा पाइडिया और धर्मिया परिवार खातिर ये गीत मांगत हवा। असल में ये गीत आप गर्ल्स बीफे के भी मांगले रहा लेकिन आप बोलत हवा कि ये गीत सुने से अक्ते आपके नींद लग गल और सुत गई ला। तो आज चला ये गीत सुना और भाग गल खसिया भी ढेर कोई ये गीत मांगे ला जा। तो जितना कोई के भी ये मनपसंद गीत है आप सब कोई के नाम

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: तुम हर साल रावण को इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता।
3: तुम्हें विलन अच्छे लगते हैं ना, तो मैं आज जाकर एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसमें विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो।
4: रावण गेम के बाहर कैसे आ सकता है?
5: रावण को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जीवन।
1: रविवार 24 मई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म रावण 2011 की मूवी। इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान और करीना कपूर। रावण भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10:13 होलबा बीच सीमा में पुलिस रोके ये गीत रतन हरी के आवाज में आप सब कोई के नाम जे ई बखत सफर में हो वजह और फिर आज जितना कोई के जन्मदिन बा जितना कोई के घर में अभी खुशहाली के माहौल चल रहा था आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे चेतवीर के घर में भी काल खुशहाली के मौसम रहा चेतवीर जे काजन क्यूपिप से हवन उनकर माँ के काल जन्मदिन रलन उनकर माँ के जन्मदिन रहा माता जी के नाम है कविता और चेतवीर के बहिन भाविया चेतवीर के दादी ओकर फूफू ओकर फूफा और पूरा परिवार कविता जी के जन्मदिन के बधाई प्रकट कर था वंजा और आप सब कोई के जेकर आज जन्मदिन बा जेकर काल जन्मदिन बा जेकर काल जन्मदिन रहल आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना आपके जीवन में सुख शांति भरल रही आपके जीवन हमेशा खुशहाल रही और आप एगो दिया की तरह सबके जीवन भी रोशन करते रह बजा।

आप सबको एक बार फिर जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। और अगला जनगीत चली संतोष महादेव की आवाज़ में। संतोष महादेव की आवाज़ के ढेर दीवाना बा और ढेर दीवानी लोग भी हवन सा। और अभी वाकवा के सुदेवी संतोष महादेव के आवाज़ में कोई भी गीत सुनने चाहत हवन। आप दीदी ललिता के नाम गीत करत हवा। आत्माराम भैया, सुनीता, शोभा देवीना, मानेगा के केशनी, कृषय, कृषिका, लक्षिका और पूरा रामरतन परिवार के नाम। और साथ में दुल्हा राम गीत सुने चाहत हवन पर भावती दादी, खास तौर पर अपन भाई आत्माराम भैया के नाम आप गीत करत हवा।

गीत सुनीता जे गोंगोप से हमने के सुना था वन, उनकर बहिन विमाला के नाम जे कोंगोमा से हवन, साथ में पितों के अमृता गणेश जी के ओर से विशाल मीनाक्षी सोनिया और परी के नाम, और जितना कोई भी संतोष महादेव के आवाज़ सुने के खुशी रहे लजा आप सब कोई के नाम इगे।

का किरण संगे। सुनीता नंकू के आवाज में अगला गीत और ये गीत सुनने चाहा था वन ललिता जी। और ललिता जी अपन जितना सखी सहेली हवन सा, जितना भाई बहन हवन सा, सब कोई के नाम ये गीत करत हवन। और साजन के देवल सारी सुनीता ननकू के आवाज़ में ये गीत जितना कोई पसंद करेला जा आप सब कोई के नाम। सुनीता ननकू जे चमेली चमेली भी गैले हवन, गीत गवाई के भी गीत गैले हवन, ये सब गीत के फरमाइश आलबा। तो आज खातिर यही गीत चली और बाकी गीत एगो अगला कार्यक्रम में फिर से चलावब जा, काहे कि आज के काफ़ी फरमाइश बा, तो वो भी पूरा करे के आज कोशिश रही।

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: घनश्याम तिवारी आज सुबह दिल्ली मुंबई मालगाड़ी की बोगी में अपने ऑटो रिक्शा के साथ पाए गए।
2: अगर ऑटो वाले आम आदमी को तंग करना बंद नहीं करेंगे तो अगली बार उनको एक ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ जाने के लिए वीजा भी लगता है और प्लेन की टिकट भी।
3: ओ, बाकी सारे।
0: रविवार 24 मई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म उंगली 2014 की ये मूवी इमरान हाशमी और कंगना रनौत पर फिल्माई गई उंगली।
4: RM3 Radio.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: रात के 10:34 होलबा और अगला जो गीत चली पलना में ये एगो ललना के गीत था पूर्णिमा फकीरा के आवाज में। पूर्णिमा जी ये गीत के फरमाइश खुद करत हवन उनकर नाती कनिष्ठ दसोई के जन्मदिन के अवसर पर जोन आवे हुरा दिन में आप लोग मन नहीं बजा। कनिष्ठ 12 बरिस 16 होई हो के बा और उनकर नानी पूर्णिमा उनकर सब मौसी मौसी मालिनी मौसी पिंकी पूजा उकर मौसा लोग और पूरा परिवार के ओर से कनिष्ठ दसोई के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना।

और एकर बाद जन अगला गीत चली वह संतोष महादेव की आवाज में मरमिट में चरहल बा गरम पानी। ये गीत खास तौर पर फ्लिक ऑफ लक से अनिता जी के नाम।

0: रात के 11 बजे में 10 मिनट कमती बा आपके साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देख लीजा ये प्रोग्राम खाली एगो मनोरंजन नहीं है बल्कि एगो थेरापी से कमती ये कार्यक्रम नहीं है। आप सब कोई के अच्छा नींद आए, आप सब कोई के स्वास्थ्य सुधर जाए, आप सब कोई के दर्द दूर हो जाए, ऐसा शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब रात के 11 बजे तक और दो तीन गो गीत अभी चले होला बा। जो अंतिम गीत चली ओकर आनंद उठाते चला और हमने के मुलाकात फिर से हुई काल फजर के हमारी धरोहर में और नहीं तो फिर से लेंदी के मिलब जा भोजपुरी तड़का में। आज्ञा द, धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रात्रि।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
5: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: नमस्कार और स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल AM2 यानी कि रेडियो मॉरिशस पर, और मैं विकास आपका साथ निभाने के लिए इस सफर में बिल्कुल तैयार। इस सफर में होंगे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन मेलोडीज, एवरग्रीन मेलोडीज, और हम चाहेंगे उस और भी आप इन गानों के साथ कनेक्शन बना के रखें।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं कि जिंदगी कोई फिल्म नहीं, मगर हर दिन एक नया सीन तो जरूर शुरू होता है। कभी हंसी की एंट्री, कभी इमोशंस का क्लाइमैक्स। लेकिन याद रखिए, हीरो वही बनता है जो मुश्किलों के बाद मुस्कुराता है। छोटी छोटी खुशियों को पकड़ लीजिए, क्योंकि यही पल बाद में यादों का सुपर हिट गाना बन जाते हैं। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी स्माइल किसी का दिन बना सकती है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: अगर आपने म्यूजिक के साथ दोस्ती कर ली है तो बिल्कुल सही काम किया है। अरे साहब, दोस्ती वो रिश्ता है जिसमें सॉरी कम और चल छोड़ यार ज्यादा होता है, जहाँ बिना वजह कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं और बिना बात के हंसी निकल जाती है। सच्चे दोस्त लाइफ के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे होते हैं, कभी कभी दिखते कम हैं मगर हर पल महसूस तो जरूर होते हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: संगीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, ये सीधा दिल से बात करता है। कभी पुराना गाना हमें बचपन में ले जाता है, तो कभी कोई धुन किसी अपने की याद दिला देती है। म्यूजिक, संगीत वो साथी है जो बिना सवाल किए साथ निभाता है। तो वॉल्यूम बढ़ाइए और दिल को गुनगुनाने दीजिए।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ

0: बस वक्त अब इतनी इजाजत देता है कि आप और हम अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को गाने के साथ समाप्त करें, लेकिन रेडियो पर तो गाने चलते ही रहते हैं, प्रोग्राम चलते ही रहते हैं और मकसद है कि आपका साथ निभाना। तो जल्दी वापस लौट कर आते हैं, तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सितारा अभी अभी अभी अभी
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग